FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hırvanı.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: It's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: You smack them back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज अ मैन इन द हाउस कम ऑन ऑल द वे।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे। थैंक यू।
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर। 13 मेरा कोड है। रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर। थैंक यू।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर जो रेशे होते हैं उनकी तब्दीली आती है, जिस्म में तब्दीली आती है, और बकायदा बाज लोगों को खांसी लग जाती है, बाज को रेशे की बीमारी हो जाती है, जुकाम की बीमारी हो जाती है। लेकिन ये बीमारियां नहीं, ये वो जरसूम है और वो चीजें हैं जो बाहर निकलती हैं, जो इंसान के अंदर जमा होगी होती है। और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खाकर या इंजेक्शन लगवाकर अपने अंदर इन चीजों को जमा कर लेते हैं, और ये सुनने और देखने में सुनने में आया है कि जो एक्सपर्टीज हैं वो ये कहते हैं कि ये कैंसर का भी सबब बनते हैं। लिहाजा जो कुदरत की तरफ से जो पतझड़ आपके जिस्म में आया है उसको बाहर निकलने से मत रोकिएगा। हाँ, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर जो है वो मशवरा करें और जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इतने भी कम कपड़े ना पहने, और खसूसी तौर पे गाड़ी का जो टेम्परेचर है, एयर कंडीशन है, उसकी देखभाल जरूर करें। और बाहर के जो इस वक्त पतझड़ के जमाने में अगर आप किसी साइड स्ट्रीट में जा रहे हैं, किसी जंगल से गुजर हो रहा है और हल्की हल्की बारिश है या कुछ, तो आप जो सड़क का माहौल है उसको जरूर देखें, क्योंकि पत्ते जो होते हैं जब ये सड़क पे गिर जाते हैं तो ये बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक स्लिपरी होते हैं, और यहाँ पे ब्रेकें जो है वो बाज़ औक़ात काम नहीं करती। तो लिहाजा आपको बड़ा एहतियात करनी चाहिए। अगर आप 60 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो 50-55 पे जाएं, ताकि ब्रेकें जो हैं वो गाड़ी जो है वो अपने वजन के हिसाब से ब्रेकों को कंट्रोल कर सके। तो ये चीजें देखने की हैं। जी राजा साहब, आपका कोई सवाल?
1: शाह साहब, आप मालूमात की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, ज़रा पहले ले लेते हैं। शाह साहब, आपने ज़िक्र किया ईद मिलादुन्नबी का, तो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जारी रहेंगे, सितंबर में भी लोगों ने डेटें दी हुई हैं, हमसे भी रब्ता होता रहता है, जाने का मौका भी मिलता है, सुनने का मौका भी मिलता है। कल बड़ी हमने इल्मी गुफ्तगू सुनी मक्की मदनी मस्जिद में, जो है मदनी मिस्टर कल्चरल इंस्टीट्यूट में, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, हाउसफुल प्रोग्राम था, बड़ी इल्मी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। इसी तरह और दूसरे उलमा भी बात करते रहते हैं, जहाँ जहाँ किसी सेंटर में ये इल्मी गुफ्तगू होती है, सुनने का मौका अगर मिलता है या किसी को भी मिलता है, तो शाह साहब एक बात सामने आती है कि सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, आशिक रसूल हैं, लेकिन शाह साहब जिस कुरान पाक का ज़िक्र करते हैं, जो उनकी तारीफ़ में हम बातें करते हैं, या उलमा बात करते हैं, सुन्नी करते हैं, शिया करते हैं, सुन्नी फ़िरके के, फ़िरके तो आपको पता है बने हुए बना लेते हैं, तो शाह साहब उसमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया, जो उलमा फरमाते हैं, तो शाह साहब उस पर अमल करने की तरफ कोई जाता नहीं है, क्या वजह है?
0: अमल जो है इसकी हदायत जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही हम लोगों को बता दी थी कि आने वाले सदियों में आने वाले जगह पे आपको मुख्तलिफ किताबें पढ़ाई जाएंगी, आपको मुख्तलिफ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको गलत, मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे उसको आपको गलत हदीसें बताएंगे और काफी बातें करेंगे। इससे इससे ये बात होगी है कि हर बंदा जो है वो ये समझता है कि मैं चंद दिनों के लिए अगर मैंने कोई ऐसा क्राइम कर लिया, ऐसा जुर्म मैंने कर लिया है, तो वो मैं चंद दिनों के लिए जहन्नम में जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वहां से निकाल लिया जाएगा और मैं वापस जन्नत में चला जाऊंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफात करेंगे। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद जो है इसकी बिल्कुल अपोजिट निशानदेही करता है। कुरान ये कहता है कि तुम वैसी किताबें ना बनाओ जैसे ईसाइयों ने बनाई, यहूदियों ने बनाई, और अपने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स आपने फिरकों में आप बट के, तो इस चीज पे सूरह अल-बकरा को आप शुरू करें तो वहां पे आपको सबसे पहले ये चीज यही मिलेगी जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो सितारा शनास हैं, ये जो उलमा है जो मेरे आयात को पढ़ पढ़ कर बेचते हैं, और ये जो उनसे कमाई करते हैं, और इसी तरीके से ये सब सब फिरकों में है, ये किसी एक फिरके में ही है, सब स्कूल ऑफ थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कुरान मजीद में लिखा है, और इसी तरह वहां पे लिखा गया है कि पहले जो फिरके थे उनमें क्या गलतियां पाई जाती थी, वो किस तरीके से, वो भी मुसलमान थे लेकिन वो किस तरीके से बदल गए, किस तरीके से वो उन्होंने अपने मुख्तलिफ फिरकों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया और किस तरीके से वो अपने दीनों से हट गए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो हर दफा है वो बिल्कुल अपने नबी को मानते थे, अपने रसूल को मानते थे और वो उनकी किताब को मजबूती से पकड़ रखे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो बिशारत की है कुरान मजीद के अंदर, निशानदेही की है कि वो जन्नत में जाएंगे और बाकी सबको मैं दोजख का, जहन्नम का ईंधन
1: तो
0: बनाऊंगा।
1: शाह साहब,
0: अब हम
1: इससे
0: ये सुन
1: साबित होता है कि जो अल्लाह ताला की या इलामी किताबें हैं, अल्लाह पाक की किताबें हैं, तो जो जो उतरी, जिन जिन रसूलों पर उतरी, तो उनका जो असली मकसद था वो सबको स्टडी होना चाहिए। एक ही अल्लाह है तो अल्लाह की तरफ सारे रजू करते हैं। तो शाह साहब, ये तो इलमी गुफ्तगू की बात हो रही थी, ये तो बहुत बड़े बड़े उलमा ही बात कर सकते हैं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं जवाब सुनने के लिए। तो शाह साहब, मौसम का आपने जिक्र किया, बीमारियों का अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं, आप भी बताते रहते हैं, टैक्सी ब्रांच का जिक्र किया, क्योंकि ये हमारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे घरों से निकल जाते हैं और शाम तक ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। शाह साहब, अगर सड़क पर हम जब देखते हैं तो ट्रैफिक का ये हाल है कि आप 15-15 मिनट जो है एक चौक में खड़े रहते हैं, इसी तरह मोटरवे पे भी जी काफ़ी देर छुट्टी के टाइम जो है लंबी लाइनें, मीलों लंबी लाइनें नज़र आती हैं, कछुए की तरह गाड़ियां मोटरवे पे भी चल रही होती है। तो शाह साहब, कम्यून जो होती है, कोपनहेगन कम्यून की पार्लियामेंट है, इसी तरह कोपनहेगन की जो कम्यून को, इसको पार्लियामेंट के मेंबर भी कहा जाता है, कोपनहेगन की होती है, तो दूसरी कम्यूनों को शायद ये एज़ाज़ नहीं मिलता, बाकी भी सारी पार्लियामेंट बनी हुई है। तो शाह साहब, सारी चीज़ें होने के बावजूद जो हमारे सिटी काउंसिलर जो भी आते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों के पास टाइम है या नहीं है। तो शौक से तो हम आ जाते हैं और इस पर वोट भी ले लेते हैं, मामा चाचा करके, ताया भतीजा करके, भाईजान करके, अंकल करके, तो वोट भी हमें मिल जाते हैं। तो शायद सब सिटी काउंसिल की होती ड्यूटी होती है, इसी तरह रीजन के मेंबर होते हैं, बड़ा बहुत बड़ा काम होता है, पढ़ा लिखा काम होता है, बाकी कमेटियों का भी काम होता है। तो शाह साहब, जब ये सारी चीज़ें पहले पता होती हैं, तो जब ये सारे लोग बन जाते हैं, तो फिर हमारे लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी 10 बंदे इकट्ठे कर, 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो शाह साहब, ये आने से पहले सोचना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए?
0: जी, आपने एक बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही सख्त किस्म का सवाल किया है। ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि पहले सवाल किया जाना चाहिए या बाद में। ये तो पहले सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो बंदा इस काबिल है कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके जिसकी उसकी मादरी जबान जो है वो उसके अपनी नहीं, उसकी सेकंड जबान है। हमें ये सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम जितने भी फॉरनर्स हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो डेनिश है। बेशक हम यहाँ स्कूलों में जाते हैं, बेशक हम डेनिश बोलते हैं, लेकिन असली तौर पे हमारी मदर टंग वही है जो हमारे माँ बाप की है, जो हम घरों में पढ़ते हैं, जिसको हम ज़हरी तौर पे हम कबूल करते हैं, वो हमारी असल जबान है, वो नंबर वन जबान होती है। तो ये जो दो जबानों वाला मसला है, इसको भी हल करने के लिए सियासतदानों को सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारे जो सियासतदान है वो ये नहीं समझ सके अभी तक कि जो आयन है डेनमार्क का, जो आयन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तारीफ क्या है, उसके कानून क्या है, वो क्या कह रहा है। लेकिन जो कानून पार्लियामेंट बना रही है, तो हम यही समझते हैं कि ये आयन का हिस्सा है या आयन का एक जैली हिस्सा है। तो ये गलत चीज है। हम फौसले जब देते हैं, जब हम किसी चीज पर बात करते हैं, एग्जाम्पल आपने कोपनहेगन की बात की, तो कोपनहेगन एक बड़ी सबसे बड़ा हमारा दारुल खिलाफा है और यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्स भी हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ के जो कोपनहेगन की जो कम्यून है, उसका फ्राइज जो है वो दूसरी कम्यूनों से बहुत बड़े हैं। वहां पे सबसे पहले जो काउंसलर आता है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो कौन से हल्के से किन लोगों ने उसको चुना है, उनकी क्लास क्या है, उनके अंदर कौन से लोग रह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उनको हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, उनको पैसों की प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह, ये उसको रखना चाहिए। फिर उसकी एक फोर्स बनाकर अपनी पार्टी से, अपनी बॉल एज जो उसकी पार्टी का जिस हल्के से वो इलेक्ट हुआ है, उनसे बात करके अपनी पार्टी में उसको मंजूर कराकर उसको ये चीजें आगे पेश करनी चाहिए। और उसके लिए दूसरी पार्टियों के लिए जो दूसरी पार्टियां वहां बैठी हुई हैं जो बिल्कुल उसकी मुखालफत करेगी कि ये कहाँ से ले आए इस किस्म की फौसले, तो उसको आयन को समझना चाहिए और वो आयन को बेस बनाकर उनको एक शट अप कॉल दे सकता है, उनको कह सकता है कि हमारा आयन क्या कह रहा है और आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो अपने लोगों की प्रेजेंटेशन पेश करेगा। इस तरीके से उसके पांव मजबूत हो जाएंगे और वो अपनी बात जो है वो समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बनाए, तनकीद करना शुरू कर गए, बहस पे ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, उस बहस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको समझा सकें, तो वो बिल्कुल होगी। अब आपने जैसे बात की टैक्सियों की, पार्किंग की, तो कोपेनहेगन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है वहां पे मेजोरिटी जो लोग रहते हैं वो है वर्कर, और उनमें ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, बस ड्राइवर भी हैं, और बहुत सारे हैंड वर्कर जिनको हम कहते हैं मसलन हाथ से काम करने वाले मुस्लिम मजदूर और लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में, अपनी वाहनों में वो सफर करते हैं, उनके लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, सड़कों की भी प्रॉब्लम है, उनके उनके काम करने के औकात में जब वो जाते हैं, मुख्तलि वक्त में वो ट्रेवल करते हैं, तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है कि वो राइट टाइम पे जो है वो किसी अपने एक मकाम पर पहुंच के वहां काम शुरू कर सके, और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको पार्किंग मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजें जो है, तो इसके लिए जो काउंसलर हजरात हैं उनको चाहिए कि ऐसे वर्कर्स, जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जो वर्कर जो ऐसे किस्म के जैसे वीवीएस वर्कर है जिसके लिए कि बहुत जरूरी है, आपका बाथरूम खराब हो जाता है, टॉयलेट खराब, कोई चीज ऐसी हो जाती है, वीवीएस को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आपके कोई विंडो टूट गई है शीशे वाले को बुलाते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल चिलैल से इजाजतनामा होना चाहिए ताकि वो जहां अपनी गाड़ी खड़ी करे, अगर वो गल ऐसी जगह पे पार्क कर दी है जहां पे उसको जुर्माने का खतरा हो, तो उसको जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आया है, एक मिशन पे आया है और वो अपना काम करके जा रहा है और लोगों को सहूलत देता है। तो गवर्नमेंट इन चीजों पे नहीं सोच रही, गवर्नमेंट ने जो है जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एक ही रट लगा ली है, ख्वाह वो कम्यून हो या पार्लियामेंट, वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है, और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है कि लोग मायूस हो जाएं, आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में जो है वो आप देखें जब सड़कों पे आप जाते हैं लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि वो तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बिल्कुल ये परवाह नहीं होती कि मेरा लाइसेंस चला जाएगा, मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, मैं किसी को मार दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कोई मार देगा थोड़ी सी गलती से, कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचता, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर वो घर में जाते हैं तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बच्चों पे या अपने फैमिली पे निकालते हैं। तो ये चीजें जो है ये समझने के लिए सबसे पहले ये जो छोटी पार्लियामेंट जिसका आपने जिक्र किया है ये कम्यून होती है, और कम्यून का काम है कि वो इन लोगों को बोली है जिसको हम कहते हैं, यानी कि सुकून की गोलियां दे, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम लेके जाए, ऐसी फोर्स लेके जाए जो इनको अमन के रास्ते पे लेके जाए, तो ये खुशहार हो। अगर आप दुनिया भर की जो अखबारें हैं या दुनिया भर की जो मीडिया हैं या जो भी चीज है उसको अगर आप देखें तो उसमें लिखा जाता है कि डेनमार्क दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल मुल्क है, तो इसके इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खुशहाल था उसको इन्होंने बदहाल कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कोपेनहेगन कम्यून और दूसरी कम्यूनों से निकलती हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने लॉबीज के लिए काम करते हैं और वो अपने लोगों के लिए आवाम के लिए काम नहीं करते। वो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो हमारे हमारे मकसद की चीज नहीं, हम चले जाते हैं। देखिए आप मोस्टली काउंसलर से बात करें जो फॉरनर काउंसलर हैं तो वो ये कहेंगे जी हमें प्लाईएम चाहिए, हमें नमाज के लिए जगह चाहिए, हमें जो है वो जो है थोड़ी सी सहूलतें चाहिए। ये वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी तालीम है, उनको स्कूलों के अंदर ये कानूनों के जब वो तीसरी चौथी या पांचवीं क्लास में इस काबिल हो जाते हैं, बच्चे काबिल हो जाते हैं, उनको उनको महीने में एक दफा यहाँ के आइन और यहाँ के कानून के बारे में वहां पे लोगों को दर्श देना चाहिए, उनको उनकी क्लास होनी चाहिए ताकि सब स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो ये सुन सकें कि डेनमार्क का कानून क्या है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं, और बच्चे उसके ऊपर सवाल कर सकें। जैसे कि ये करते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं और बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह अगर ये कानून के बारे में सियासतदान जाके उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें, उन मासूम लोगों को बताएं कि आपकी इस गलती से आपकी जिंदगी कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो बच्चे जो है वो अल्कोहल भी पीना छोड़ देंगे, वो ये जो अपना कैसीनो टाइप मशीनें लगी हुई है इनको खेलना छोड़ देंगे, रात को जो बाहर जाके वो 6-7 बजे के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू करती है, मेन स्टेशनों में चले जाते हैं, सेंटरों में चले जाते हैं और ग्रुप की शक्ल में लड़ाइयां झगड़े करते हैं। तो ये घरों में बैठ के अपने आप को चलने की बकायदा एक तरबियत होनी चाहिए। जैसे कि अभी पूरे यूरोप के अंदर है कि बच्चा जो है आप 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे को किसी सूरत भी आप मोबाइल ना दे, इंटरनेट ना दे। हमारे लोग जो है घरों में चले जाएं तो वहां पे इंटरनेट ही इंटरनेट लगा होता है, टीवी लगा होता है, कार्टून्स लगे होते हैं, उससे बच्चा जो है वो खेलने से बाहर जाके मैदान में खेलने से बजाय अपने दोस्तों के साथ बात करने की बजाय वो उसी तरह अग्रेसिव हो जाता है जैसे कि वो एक कार्टून को देख रहा है या दूसरी चीजों को। तो जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने काफ़ी तफसील से बताया, सारी चीज़ों का अहाता किया। शाह साहब बहुत सारी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, कमेटियाँ बन जाती हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, मजहबी अदारे बन जाते हैं, मसाजिद बन जाती हैं, तो शाह साहब लोग हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। कभी कोई कहता है जी फलां जो मजहबी अदारा है उसकी मालकियत किसके पास है, लगता है कि वो सारे कहते हैं ये अवाम के हैं, ये सब लोगों के, सब लोगों का चंदा है। लोग कहते हैं जी महसूस होता है कि पता चलता है कि किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है इसमें, किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है। ज़ाहिर है हर सिस्टम को जो है वो कमेटियां ही शाह साहब चलाती हैं। डेनमार्क का तो सिस्टम यही कहता है, कानून कायदा यही कहता है कि यहाँ सिस्टम से और कमेटियों से ही जो है वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बाहर चंदा या वोट देने वाले बाहर आते हैं तो सारी जो अवाम जो है उसकी मेम्बर होती है, जो पेड मेम्बर होते हैं, असल में वोट डालने के हकदार तो वही होते हैं जो पेड मेम्बर होते हैं, जो क्लेम कर सकते हैं जी मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ये एक जहलीत होती है जो अच्छे काम को भी जी कहना शुरू कर देती है, जी फलाने कब्जा कर लिया, फलाने हुकूमत बना ली, फलां बरादरी इस पर काबूज है, तो शाह साहब ये भी एक जहलीत की निशानी है। जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, शाह साहब क्या मेंबर बन के ही खिदमत की जा सकती है? मेंबर बने बगैर भी तो खिदमत की जा सकती है। उसके अलावा शाह साहब सियासत की जब आप बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो कानून कायदे बनते हैं वो तो कम्यून के अंदर बनते हैं, ऊपर जो पार्लियामेंट जो है जिसे फलके सिंह कहते हैं वो तो कानून की जो है वो डिबेट्स होती हैं, जब कानून तय आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यूनों में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो शाह साहब हम कोई सियासी इतजाज भी हमारे लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज सिर्फ करना चाहते हैं, करना जानते हैं, जगह जगह आपको सड़कों पर सुराख मिलेंगे। शाह साहब ये वो मुल्क है, इसका बेसिक जो समझ आ रही है हमारा ये मुल्क जो है कि टैक्स होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी, अस्पतालों में सहूलियात मिलती हैं, ये में यल्पा की सहूलियात मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो मजदूरों की है उसकी सहूलियात मिलती है, और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, ये सारा टैक्स से निज़ाम चलता है। अस्पतालों के अखराजात होते हैं तो इनकम जो होती है जो कहते हैं ज़र मुबादला होता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं टैक्सों और बात पे। शाह साहब ये निज़ाम में आसानियाँ किस तरह पैदा की जाए? ये वही निज़ाम था जब आप लोग आए थे शुरू में, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है तो, लेकिन अब सख्तियाँ ज़्यादा। जी शाह साहब,
0: جی آپ نے بالکل راجہ صاحب دو سوال کیے ہیں اور دونوں کے جواب جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مسجد کی یا ایک نماز والی جگہ کی آپ بنیاد رکھتے ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, اور اللہ کے گھر کے اندر جو ہے صفائی رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے. وہاں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, وہ آئے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کے گھر کو جو ہے اس میں یہ کوئی نہیں کہ یہ چودھری ہے, یہ شاہ ہے, یہ آگے جا کے بیٹھے گا, مجھے پیچھے بیٹھنا ہے, یہ پرانا گاؤں میں اتنی اس کی حیثیت نہیں, یہ ہم سے آگے کیسے بیٹھ گیا, اس نے مسلح خریدا ہوا ہے, یہ اس کے مسلح کا نام لکھا ہوا ہے, یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے گھر میں نہیں ہوتی, اس سے زوال پذیر ہوتے ہیں لوگ, اور یہ قرآن مجید کی اور سنت کی ہدایت ہے, اس کے اندر آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے. سب لوگ جو ہیں, ہر مسجد جو ہے, نہ کوئی مکی مسجد ہے, نہ کوئی مدنی مسجد ہے, نہ کوئی شیعہ مسجد ہے, نہ کوئی مسجد, یہ سب مسجد ہونے چاہیے اللہ کے نام پہ. اس میں ہر فرقے کے بندے کو جب دل چاہے, جہاں جس وقت دل چاہے, وہ آ کر اللہ کے نام کی تلاوت کر سکتا ہے, قرآن شریف پڑھ سکتا ہے, وہاں پہ اپنی عبادت کر سکتا ہے, اور اللہ کے حضور میں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نا امید ہو جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے رجوع کروں اور اللہ کے پاس جاؤں, تو مسجد کو ہر وقت کھلا ہونا چاہیے, وہاں پہ جا کے وہ علماء دین سے بات کر سکتا ہے. اور یہ جو سوال جواب ہے, ان کے جوابات دینے جو ہیں, جتنے بھی عالم ہیں, مولوی ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائی کرے. اگر اس کے سوالات اتنے برے بھی ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی اس کے سوالوں کے جواب دیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو سکے. اللہ کے گھر میں ہر آدمی کو ویلکم ہونا چاہیے, اور یہاں پہ نہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا, دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں میں ابھی تک 70 سے لے کے 90 تک جب ہم یہاں تھے تو ہمیں میں نہیں تھی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 2000 تک ہمیں میں نہیں تھی, لیکن اس کے بعد ہمیں میں آنی شروع ہوگی اور ہمیں ریس شروع ہوگی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کون لگا رہا ہے, شادیاں کون کر رہا ہے اتنی بڑی, کس کو بلانا ہے, کس کو نہیں بلانا, کہاں گاڑی کرنی ہے, کس کے پاس بڑی گاڑی ہے, کس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے, کسی طریقے سے بھی سرمایہ آ رہا ہے تو اس کو آنا چاہیے. ہم نے, میں سب کو نہیں کہوں گا, لیکن پھر بھی 15% ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ابھی بھی حلال کو ایک سائڈ پہ کر کے حرام کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں حرام جو ہے وہ صرف اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی کو انتہائی خطرہ ہو. وہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کے قریب ہیں تو آپ بھوک سے مر رہے ہیں, تو آپ وہاں تھوڑا سا سور کھا لیں, تو وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا پیٹ بھر لیں, صرف یہ کہ آپ سروائیو کر جائیں. اسی طرح سے شراب یا کسی دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خون میرا حرام کیا ہے, تو اس سے اگر آپ کی سروائیول ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ہے. لیکن پھر ہمارے لوگ جو ہیں اس کو پرماننٹ اگر ایک چیز بنا لیتے ہیں, جیسے کہ دوسری قوموں نے بنایا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس جن کے پاس علم ہے ان کو آگے نہیں لایا جاتا, ان کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, ان سے سوال جواب نہیں کیے جاتے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے مسائل اٹھتے ہیں کہ جس کا لوگ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس زمانے میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک کے جو ہیں وہ سوالات جواب کرتے ہیں, اور یہ ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے. صرف قرآن کو پڑھ لینا جو ہے عربی میں, اس سے آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو اس کی جو اردو زبان ہے یا آپ کی جو ترکش زبان ہے, کسی بھی زبان جو بھی آپ کی مادری زبان ہے, اس کے اندر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کے جو دماغ ہے اس کو وہ حاصل کر لے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ حفظ قرآن نہیں ہو سکتا, ہر آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر سے دوسری چیزوں میں نہیں جا سکتا. یہ چند ایک پاسٹریت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس شیطانی علم ہوتا ہے. आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा, इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास, इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जैसा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए, ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी
1: तो
0: कहानियों
1: शाह
0: पे
1: साहब
0: हम
1: देखे
0: अमल
1: ना,
0: करें।
1: जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है, उस जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ जो नज़र आता है अगर हम उस पर भी तनकीद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ को मना भी नहीं है तनकीद करना। लेकिन शाह साहब जमहूरी निज़ाम ये ना एक बना हुआ है कि एक के पास 9 वोटें होंगी, एक के पास 8 होंगी, 9 वाला जो है वो जीत जाएगा, चाहे जो कुछ भी हम मर्जी कहते रहें, जो 9 वाला वोट वाला है वही जीतेगा। ये है जमहूरियत, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो शाह साहब देखें, साल साल से बरतानिया बहुत एडवांस है, बहुत पहले लोग वहाँ आए, यहाँ डेनमार्क में 70, 71, 69 में लोग आए, अब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। तो शाह साहब अब निज़ाम में तब्दीली होने चाहिए, बंदे को खुद सीख जाना चाहिए। कल हमने देखा कि लोग कम कहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना जमहूरी हक है, सियासी हक है, इजाज़त ली जाती है, डेमोस्ट्रेशन की जाती है। बरतानिया की एक खबर चल रही थी जिसमें सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये लोकल खबर बनती है, पाकिस्तानियों की खबर है, मुसलमानों की खबर है। तो शाह साहब इंग्लैंड जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए अगर इजाज़त मिली है डेमोस्ट्रेशन करने की, कोई आदमी डेमोस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्लास कितनी होती है, कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले की सोच कितनी है, वो पैसे लेकर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है या खुद जमहूरी निज़ाम के लिए हक लेने के लिए कर रहा है। तो कुछ शाह साहब एक सैयद साहब हैं पढ़े लिखे हैं जिनका तल्लक ओवरसीज से है, उसकी वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियो पर जो वायरल है, एक बंदा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है बकौल लोगों के, दूसरी तरफ जो है एक पढ़े लिखे सैयद है जिनका तल्लक जो है ओवरसीज के साथ तल्लक है, और उनकी गालियों की पता नहीं वो असली वीडियो चल रही है या कि बनाई गई है गालियाँ वो दे रहे हैं। तो शाह साहब इन चीज़ों को जब हम बदला ही नहीं चाहते, हम गुलामी से निकला ही नहीं चाहते, 1400 साल पहले हमें गुलामी से आज़ाद कर दिया, हम सोसाइटियों के गुलाम, तंजीमों के गुलाम, सियासी जमातों के गुलाम, अब अपने मुल्क की हुकूमतों के गुलाम, जो हमें पोस्ट देता है हम उसके गुलाम। जी शाह साहब
0: कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें आज़ाद पैदा किया गया था रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अपने नबूवत का नहीं रसालत का, नबी तो वो पदाइशी थे, रसालत का आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र के, कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी और रसूल भी हूँ, और रसूल वो होते हैं जो जो जो किताब लेके आते हैं और अल्लाह की किताब और आपने आखिरत का। तो आपने सबसे पहले दो चीजें खत्म की थी, एक लॉन्डी खत्म की थी और एक गुलाम खत्म किया था। और आपने सबसे पहले, आपको पता है कि जो हमारे हबशी ने जिन्होंने अजान दी थी, मुझे रस्ता फारस भी उनका नाम जेल से एकदम निकल गया, तो उन्होंने ये चीजें जो है अल्लाह के रसूल ने उनको अपने पास से पैसे देकर आजाद कराया था। तो ये कहना कि जी इस्लाम में जी वो बाद में शराबें हराम हुई और बाद में गुलाम जो है वो आस्ता लोगों को इस तरफ मोटिव किया गया और ये चीजें बाद में खत्म हुई, ये जहालत की सबसे बड़ी और ये दुश्मन के साथ मिलावट करने की और मिल जाने की सबसे बड़े सबूत है, जिसके अंदर इन्होंने हर एक चीज वो की जो सिर्फ हम कलमा पढ़ के बाकी हर वो काम कर रहे हैं जो कुरान मजीद के अल्लाह की दी हुई किताब जो हमारा ईमान होना चाहिए, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने अभी बात की, मैं एक मुख्तसर ये चीज बताता हूँ। आपने कहा कि अंग्रेजों ने, इंग्लैंड बड़ा मॉडर्न था, 1942-43 की वॉर के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गया था, डिमोलिश हो गया था। इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे कि इनको लोगों की जरूरत थी, इनकी औरतें बहुत ज्यादा हो गई थी, फाहिशी बढ़ चुकी थी, मर्द बहुत कम थे, जंग में मारे जा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त के हिंदुस्तान से इन्होंने शिप भर भर के, आप अभी भी लाइब्रेरी में जाके इनकी खबरें निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड में जब वो जहाजों से उतरते थे, उनको पंजाबी आती थी, सिंधी आती थी, जो भी जुबान आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको गोरिये पकड़ पकड़ के वेलकम कर रहे थे। तो इनके घरों को इनको बनाया गया, इनके मुल्क को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और आज इन्होंने उन्हीं लोगों को लेके तो हमारे मुल्क को जो है इसको गुलाम बना दिया है। अब यह हमारा मुल्क ही वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा दीन जो है फिरकों में बटे हुए हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, सऊदी में चले जाएं, इराक में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, कतर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको तीन चार फिरके नजर आएंगे। पाकिस्तान वाइल्ड एक ऐसा मुल्क है और इंडिया जहां सबसे ज्यादा फिरके जो हैं वो मुसलमानों में पाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे फिरके हैं कि जो एक मस्जिद में भी पूरी नहीं कर सकते। तो मस्जिद के साथ ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेज
1: चीजें डेनमार्क में भी हैं,
0: अब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। यहाँ पे ये जब हम इन लोगों ने हमें लाए थे तो उस वक्त सबसे बेस्ट नेशन जो थी इनके हिसाब से वो मुसलमान थी, क्योंकि 57-58 में यहाँ इन्होंने यहूदियों को इसराइलियों को आबाद करने की कोशिश की थी दूसरे ममालिक से। तो उन्होंने यहाँ पे वही करप्शन के और दूसरे हालात पैदा कर दिए। यहाँ पे हर चीज वगैरह हर एक चीज इनके मुल्क के आईन के खिलाफ चलनी शुरू होगी।
1: तो फिर इन्होंने क्या किया, बार बार हम जिक्र भी करते रहते हैं शाह साहब, हम सारी चीज आपको हमें या दूसरों सबको पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करनी गुनाह है। तो शाह साहब ये इल्ज़ाम हम क्यों नहीं देते कि हमें ट्रंप ने कहा कि गीबत किया करो या नतन्याहू ने कहा कि, बाकी सारी चीज़ें हम उठा के उनकी तरफ फेंक देते हैं।
0: इसलिए कि जो जब हम हराम खाते हैं तो हमारे पास इल्म नहीं होता, तो फिर हम मुताज हो जाते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम चले जाते हैं। आप ये देखिए कि आप ये देख रहे, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें, जब आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे कितने मुकर्ररीन आते हैं, कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, क्या उनसे कोई ऐसी बात जो है कोई ऐसी बात निकलती है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो आगे चले? नहीं, वो वही बात करते हैं जो इन्होंने उनके खिलाफ लिखी हुई किताबों की हो या उनके बारे में या सुनी सुनाई बात करके करते हैं। डेनमार्क के अंदर जो आइन है, अभी तक जो आइन है ये वो आइन है जिसके अंदर इन्होंने 1952 में थोड़ी सी जो है तब्दीली की थी, लेकिन उसके पहले जो आयन है वो उमर लॉ कराता और ये अब तक उसको उमर लॉ कहते हैं। ये मुसलमानों का है, यहाँ पे औरत से लेके बच्चे के पैदा होने से लेके हर जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट की है, और यही जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून था और ये इस्लाम का कानून था कि जो स्टेट में रहता होगा, जो हमारे मुल्कों में रहता होगा, उसको गवर्नमेंट जो है वो सारी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट के खजाने जो है मालूम उसके अंदर से पैसा दिया जाएगा। इसीलिए तो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो थी रोम में,
1: क्या बात कर रहे हैं
0: जी, हर चीज जो है ये सोशल सिस्टम है ही इस्लाम का लाया हुआ, ये बिल्कुल गौरव का नहीं ना इनका है। इन्होंने बेशक इनसे डिबेट करके देख लें, इनसे आपको आखिर ये मानेंगे कि हाँ हमने जो मेडिकल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, दूसरी चीजें ये सब हमने इस्लाम से सीखी हैं, क्योंकि देखे आपके कुरान के अंदर हर चीज वो है जो ना पहले थी और ना अब है, अब हर चीज उसके अंदर डिस्कवर है। हजरत आदम से पहले क्या था, हजरत आदम के बाद क्या हुआ, दुनिया कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई, नस्लें कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई। अब जो बंदे ये कहते हैं जी कि हम सब आदम की औलाद है, ये कुरान को नौजबिल्ला कुरान मजीद को जुटलाते हैं। अफ्रीका में जो कौमें बात हुई, मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब मुख्तलिफ किस्म, चाइना, ये मुख्तलिफ किस्म की कौमें जो है ये अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ने कहा हो जाओ तो होगी। तो अब ये चीजें हैं जो ये बैठ के उलमा दीन जो जो कुरान को समझते हैं,
1: सारी इल्मी गुफ्तगू है इस पे, तो जिसके पास स्टडी होगी वही इन चीजों की बात को समझेगा या जवाब देगा। तो शाह साहब हमारे पास अभी 5 मिनट 2 मिनट रहते हैं कि ये जो आने वाले پارلیمنٹ کے الیکشن یا کمیون کے الیکشن، یہ تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ ہمارا سارا نظام جو ہے وہ کوپن ہیگن کمیون میں، ایلبرسن کمیون یا جتنی بھی ڈنمارک میں کمیون ہیں وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جب شاہ صاحب ہم خود ہی ان سے فائدہ سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اٹھانا نہیں چاہتے، ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ شاہ صاحب ہم صرف گلہ کرنے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں؟
0: نہیں، آپ نے صحیح بات کی۔ اس وقت ہمارے دو پاکستانی جو ہیں وہ ملک سکندر اور کاشف احمد جو ہیں، یہ بے شک ڈنمارک میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے جو روٹس ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ جو ہمارے لوگوں کی پرابلمس ہیں، جو اس وقت میجر پرابلمس ہیں،
1: اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں جو خبریں ملتی رہتی ہیں۔
0: جی، وہ میں بھی ان کو سنتا رہتا ہوں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو وہ چیزیں ہائی لائٹس کرنی چاہیے جن میں ڈینچوں کو بھی تکلیف ہے اور فورنرز کو بھی تکلیف ہے۔ یہ ان کو یہ نرمی تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے۔ ابھی آپ آج کی بی جی کھول کے دیکھ لیں تو اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ 34% جو ہیں، 34% جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ مرڈرز اٹمپٹ ہوتے ہیں قتل کے، وہ اس کے اندر فورنرز شامل ہے۔ اچھا 34، اور آپ یہ کہہ لیں 35 کہہ لیں، تو جو باقی 65% ہے وہ تو خود یورپین پیپل ہے یا ڈینش ہے۔ تو ان کو اتنا بڑا فساد کرنا اور اتنا شور و غل کرنا کہ یہ جی مسلمان ہے، مسلمان اتنا کر رہے ہیں، اب یہ خود مان رہے ہیں کہ 65% جو لوگ ہیں یہ ان کے اپنے ہیں، اور ان کے اوپر یہ بات کریں۔ انہوں نے یوکرین سے بندے یہاں لائے، 66,000 سے زائد جو یگسٹر یہاں پہ آئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ پولیس نے ان کو رپورٹ کیا۔
1: بات آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے ذکر کر دیا، تو جو یوکرین کے شہری آئے ہیں یہاں کر آباد ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا، ہمیں کیا فائدہ ہوا، یا ڈنمارک کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟
0: دیکھیں جی، جب کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر فارنر فارنر ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس ڈینش نیشنل ہے یا آپ کون ہیں یا آپ کا رنگ کیا ہے یا کون سا مذہب ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے اندر آپ سب کو ایک ہی وہ گیہوں کی جو چکی میں گیہوں پیستے ہیں، اس کے اندر وہ جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کون پس رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب بنتی ہیں تو پھر اس کے اندر قوانین کو سخت کرنے کے لیے جب وہ فوصلے لے کے آتی ہیں مختلف پارٹی، تو اس کے ساتھ ہم سب پستے ہیں، جو ہمارے اچھے سے اچھے بچے ہیں، جیسے ماشاء اللہ آپ کے بیٹے ڈاکٹرز وغیرہ، بڑے بڑے لوگ، لوگوں کے بچے جو پڑھے لکھے بڑے بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، عام آدمی کو تو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے، جب اس کی شکل دیکھے گا تو کہے گا یہ بھی ایک کرمنل ہے دوسروں کی طرح۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے انگلینڈ کے اندر ہے یا فرانس کے اندر ہے یا اپنے جرمنی کے اندر ہے کہ جس بندے نے کرائم کیا ہے صرف اس کا نام، اس کی شکل دکھائی جائے، نہ کہ پوری نیشن کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے۔ تو یہ فیصلے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے کونسلرز کو کہنا چاہیے کہ یہ کوپن ہیگن میں اس کا بل پیش کریں، اور ان کو کہا جائے کہ جو بندہ ذاتی طور پہ کرمنل ہے اس کے اوپر اس کو بنایا جائے، نہ کہ اس کے پورے خاندان کو اور پورے معاشرے کو اس سے ریلیٹڈ کیا جائے۔ اور یہ ڈینش آئین کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈینش آئین کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے۔
1: بالکل کلوزنگ کے پاس ہیں شاہ صاحب، ذرا اب آپ کی طرف سوال کو میں لے کر چلتا ہوں۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو حقوق لے کے دینے کی بات کرتے ہیں، لے کر جو اس کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ڈیبیٹ میں بھی جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، کمیون میں بھی جاتے ہیں، لوکل تنظیمات میں بھی جاتے ہیں، تو شاہ صاحب آپ ایک جماعت کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اپنا حق نہیں لے سکے۔ اسی طرح ایک بندہ 28 سال یا 20 سال ایک پارٹی کا صدر رہا، وہ اپنا حقوق نہیں لے سکتا۔ تو نہ جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو نہ حقوق کی بات کرتے ہیں، دونوں چیزیں تو آپ یہ خود نہیں لے سکے۔
0: دیکھیں جی، میں آپ کو ایک سیدھی بات کرتا ہوں، یہ جو میں ریڈیو پہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں یہ آپ کی وجہ سے دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، میں لوگوں کو انفارمیشن مہیا کرتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئیں مجھ سے کراس کوسچن کریں، ٹیکسیوں کے بارے میں پوچھیں، قانون کے بارے میں پوچھیں، آئین کے بارے میں پوچھیں، تو میں آپ کو سوال دیتا ہوں، میں اس کی تیاری بھی کر لیتا ہوں، جس کی چیز کا مجھے پتہ نہیں میں کمپیوٹر کھول کے میں اس کی تیاری اسی وقت کر لیتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں، اس کو ڈینش میں بھی پڑھتا ہوں، انگلش میں بھی پڑھتا ہوں، پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنی اردو زبان میں، میں اس میں بھی پھر तो राजा साहब ये चीजें जो हैं इससे आपका जो शक और शुबा होता है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो जो अपनी चेयरमैनशिप है वो मैंने खुद इसलिए छोड़ा है कि जहां पे अगर कोई यंगस्टर को लोग कहते हैं जी हमारे यंगस्टर्स आएंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये उसी जमहूरियत का मैं हिस्सा हूं कि जो 70 से लेके 90 तक मिडल ऑफ 90s तक जो था यहाँ का माहौल बड़ा अमन पसंद था। तो वो उन्हीं बुजुर्गों के मेरे साथियों की वजह से था, मेरे कुलीगों की वजह से था। तो अब जो यंगस्टर्स आए हैं, जो यंगस्टर्स ने मैदान यहाँ पे खड़ा किया है, जो कार रेसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े फ्रॉड कर रहे हैं टैक्स के साथ भी और दूसरों का, और रोजाना अखबारों में आया होता है, तो ये हमारे वक्तों में नहीं था। ये चीज चंद एक थे लेकिन वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब जो जो है सब्जेक्ट ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर अगर किसी ने रिस्पेक्ट करनी होती तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते कि भाई ये इतना अरसा से इस कर रहा है, इससे कोई आवाज नहीं उठाई। और जमहूरियत इसी का हिस्सा है कि अगर कोई ग्रुप आप में पैदा हो जाता है तो आप देखे कि जब इमाम हसन के लिए ये सामने आया, नौजबिल्ला मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया कि भाई अब मुसलमानों ने एक फिरका ने जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे खिलाफत से छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप खलीफा बन जाए, तो जब आप छोड़ेंगे तो खिलाफत फिर मेरे पास आ जाएगी, तो उस मुआहदे को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यही अब चीज है कि मैंने उनको कहा कि ठीक है आपने एक ग्रुप बना लिया तो आप इस ग्रुप को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको भी उनको भी चाहिए कि दूसरों को, मुझे नहीं हर ग्रुप को ये चाहिए कि जो उनके पुराने हैं जो उनके साथ लॉयल रहे हैं जिन्होंने असल में ये ग्रुप का क्रिएट किया है, जैसे आप कम्युनिटी के चेयरमैन है आपको शील्ड दी गई है खुशी का मौका है, इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, जलस नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं पैदा करना चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह का को मंजूर हुआ तो सबको दूसरों को भी मिल जाएंगे हर चीज हो जाएगी। जब आप आवाम में पॉपुलर होते हैं तो फिर खुद ब खुद अम्बेसी को ये पता लग जाता है कि इस बंदे के पांव कहाँ पे है और कहाँ ये पॉपुलर है। तो राजा साहब मैं तो यही कहूंगा कि जमहूरियत वो करता है, देखिए आप जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते, कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि आपके रेडियो की आवाज जो है, आपकी आवाज जो है ये सारी दुनिया सुनती है, एक कनाडा से लेके न्यूजीलैंड तक लोग इसको इंटरनेट पर सुनते हैं, और लोग हर जगह पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, जो सुनने वाला है, इवन आपके कुछ कुलीग थे जो डॉक्टर थे रशिया में और दूसरी जगह पे, वो भी आपके साथ हम कलाम भी हमारे साथ रेडियो पे होते थे, वो भी सुनते थे और सुनते हैं लोग। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत ये नहीं कि आप चंद एक अपने लोगों को ले लें और उन्हीं को बस बड़ा बनाकर हर चीज आगे रख दें, बेशक उनको किसी बात का इल्म हो या ना हो, वो जमहूरियत ही वो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत यही है कि आप
1: तो
0: आवाम के साथ,
1: इससे फिर साबित हो गया कभी हम आजाद नहीं है।
0: देखिए हम आजाद जरूर हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वही चाहते हैं कि हम आजाद ना हो और हम गुलामों की जिंदगी गुजारे, लेकिन वो जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है, तो इंसान को उसको उस पर भी अमल
1: तो
0: करना
1: शाह साहब आपका
0: चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, काफ़ी लंबा टाइम शाह साहब आपने दिया, आपका कीमती टाइम होता है, बाकी लोगों ने आपसे दम दरूद भी कराना होता है मुफ्त में, जैसे पता है शाह साहब ये दुआ भी मुफ्त में मिले ना तो वो लोग फिर लाइनों में लग जाते हैं।
0: जी देखिए सब कुछ अल्लाह देने वाला है, सिर्फ आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह ताला हर चीज पे आपको कामयाब करता है। तो मेरी सबके लिए ये दुआ है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि मिलाद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, कुरान मजीद को पढ़े, अपनी जबान में पढ़े, समझे, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन लगा लें, पढ़े नमाज, अगर आप एक वक्त नहीं पढ़ सकते तो उसको मजबूरी वक्त है तो आप उनको इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करके घर जाके पढ़ लें, मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाके पढ़ लें, लेकिन फसाद पैदा ना करें, गबियत ना करें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी सजा जो है वो 3 चीजों की है, एक तलाक, एक गबियत करने वाली और एक किसी का कत्ल करना। तो लिहाजा इन चीजों से जो है हमें परहेज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि کہ جو آپ دل میں کسی کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی بھی وہی سزا ہے, کیونکہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب, ان کو آپ سن رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی صاحب, کوئی بھی ہمارا لسنر بات کرنا چاہتا ہے, جواب دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین, آج کا پروگرام لے کر ادارہ ٹی وی لنک ڈار ڈی کے کا پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج کا جو پروگرام ہے یہ اسپیشل پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر سامعین و ناظرین, جو ہمارے پاس تازہ ترین معلومات ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ریڈیو پر, ٹی وی پر شیئر کرتے ہیں, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اور کئی سالوں سے کام ہم سر انجام دے رہے ہیں. سامعین و ناظرین, چند دن پہلے ایک میسج موصول ہوا مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈنمارک کی طرف سے, جن کی ہم بہت مشکور ہیں, انفارمیشن دی اور دعوت بھی دی. چونکہ ہمارا پروگرام اسی ٹائم ہوتا ہے بلکہ جلدی شروع ہو جاتا ہے, تو ان کی دعوت دینے کا بہت شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کو سامعین و ناظرین بتاتا چلوں کہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پروجیکٹس جو ان کے ہیں, ان کے جو منصوبہ جات ہیں, اس کے بارے میں انگلینڈ سے, یو کے سے مہمان جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. ان کے سامنے وہ ڈیمونسٹریشن کریں گے, وہ بھی ڈیمونسٹریشن کریں گے اور اپنے نئے جو منصوبہ جات ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین و ناظرین, جو ہمارے پاس پہلے اس طرح کی میسج آتے تھے یا پریس ریلیز آتے وقت بھی منصوبہ جات جو ہیں وہ ہمیں بتائے جاتے تھے, دکھائے جاتے تھے اپنے پاس بٹھا کر, اور 3D کی شکل میں وہ سارے منصوبہ جات, وہ سارے پروجیکٹ آنے والے دنوں میں ہمیں وہ دکھائے جاتے تھے. لیکن یہ جو نیا پروجیکٹ یا نئے منصوبہ جات ہیں سامعین و ناظرین, ہمارے مہمان ہیں راجہ بابر فاروق. راجہ بابر فاروق سے کہیں گے کہ ان جو نئے منصوبہ جات ہیں یا جو پروگرام ہو رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے, بچوں کے پروگرام ہو رہے ہیں, اس بارے میں اور نئے منصوبہ جات کے بارے میں خوش آمدید.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب دوں. رائے صاحب, میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے اور متفق کا علیہ حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل, کہ جن کے اونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے, تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ خطیب ہیں, یہ وہ امام ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو نیکی کا درس دیتے تھے اور اپنا کردار نہیں بدل سکتے تھے, یہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو نیکی کا درس دیتے ہیں, اس کے انجام کا آقا صلاۃ وسلام ہمیں پہلے سے بتا. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. 23 مارچ کو یہاں پر ایک پروگرام ہو رہا ہے, اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ریڈیو آپ کی آواز پہ, ٹی وی لنک پہ, کہ ہم چاہتے ہیں, یہی خواہش ہے جو بھی دیار غیر میں رہتے ہیں اور اس ملک میں رہتے ہیں, کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں کے ایک بہترین شہری بنے, اور یہاں کے بہترین شہری ہوتے ہوئے وہ پاکستان کا جو کلچر ہے, جو تاریخ ہے, اس کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں, دین کے بارے میں سیکھیں, اپنی زبان کے بارے میں سیکھیں, احترام ماں باپ کا کیا ہوتا ہے یہ سیکھیں, ہماری اپنی جو ویلیوز ہیں ہمارے اپنے کلچر کی, اپنے مذہب کی, اپنے ملک کی, اور اس کے لیے ہم اپنے وقت میں بھی بہت سارا کام کرتے رہے, آج بھی کام کرتے ہیں اور بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جس نقطے کو میں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کا یہ اچھا عمل ہے, ضرور کرنا چاہیے, بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے. لیکن بچوں کی آڑ میں اگر کوئی چندہ اکٹھا کرے, بچوں کی آڑ میں کوئی قرض اتارو اور نسلیں سنوارو, یہ جو موٹو ہے اس 23 مارچ کے پروگرام کے پیچھے, میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. خیال ہے جس کو لے کے لوگ اس لیے چلتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ پیسہ اکٹھا کر سکیں. اور یہاں پر بہت پیسہ اکٹھا ہوا, بہت سارے پروجیکٹس میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, اس پیسے کا حساب نہیں دیا جاتا. بہت دنوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ مساجد ہوں, مدارس ہوں, کوئی بھی ادارہ ہو جس کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن شفافیت ہونی چاہیے. اور اگر آپ دین کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں, اپنے ملک کے نام پہ پیسہ, اپنی ویلیوز کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں, تو پھر تو آپ پر دوہرا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے امانت لی اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جو امانتیں آپ تک پہنچی, صاحب حساب دیجئے, تو حساب کے بدلے میں ہمیں تھریٹس آتی ہیں, حساب کے بدلے میں ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے اور ہماری زبان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو ان کی خام خیالی ہے کہ کوئی کسی کی زبان بند ہو جائے گی. سچ بہرحال سچ ہوتا ہے, اس نے ایک دن دنیا کے سامنے آنا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ اپنا سفر کا جب آغاز کرتے ہیں تو جھوٹ پہ اپنی زندگی اور کردار کی بنیاد رکھتے ہیں. جھوٹ پہ کھڑی ہوئی عمارتیں, جھوٹ پہ کھڑی ہوئی شخصیتیں, جھوٹ پہ کھڑے ہوئے لوگ ایک دن منہ کے بل گرتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ یوں ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں وہی ان کو منہ کے بل گرا دیتے ہیں. کبھی کبھی وقت بڑی سخت چیز ہے, وہ ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے. اور پھر جو خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گواہ بیٹھتے ہیں. اور انہی لوگوں کے بارے میں ہے اسی پروگرام کا دوسرا حصہ جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. میرے وہ سادہ لوگ, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ لوگ ہیں جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں, جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں, جو ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کے نام پہ قبروں کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو, دوزخ کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو, مسلے بیچ کے اور جگہیں بیچ کے اور مسجد میں اینٹیں لگا کے اور اس کو کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو خدا را آپ جب مساجد کو پیسے دیتے ہیں, مدارس کو پیسے دیتے ہیں, کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں, کسی شخصیت کے پیچھے چل کر جب یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو آنکھیں بند کر کے مت کیجئے. اور جو کچھ آپ امانت دے رہے ہیں کیا یہ حقدار تک پہنچے گی کہ نہیں؟
3: ایسا میں نے ذکر کیا تھا پروجیکٹس جو ہیں وہ جو مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے انگلینڈ سے آ کر جو ڈیمونسٹریشن کریں گے اور سلائڈز وغیرہ پر دکھائیں گے, نئے پروجیکٹس بتائیں گے. جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہمارے میڈیا کے پاس, کہ پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس بنے جو کہ میں نے 3D کی شکل میں میں نے خود بھی وہ دیکھے اور اس پر یونٹس خریدے گئے. لوگوں نے پانچ پانچ چار چار تین تین یونٹیں خریدی. جو میرے پاس معلومات ہیں جو ویڈیو کی شکل میں میں نے دیکھی ہیں, آواز کی شکل میں, تو اس میں ایک یونٹ جو ہے وہ تقریباً 1,000 یورو یعنی 7,500 کرون کے برابر جو ہے وہ ایک یونٹ ہے. اور لوگوں نے چار چار پانچ پانچ یونٹ بھی خریدے. اور میرے جو حساب کتاب کیا جائے میں جو ہے نا وہ یہ یونٹس جو ہے لوگوں نے خریدے ہیں, کیا وہ سارے یونٹس مکمل ہو چکے ہیں؟ اور میرے نالج میں, ہمارے میڈیا کے نالج میں اور دوستوں کے نالج میں بھی ہے کہ ایک جگہ بھی خریدی گئی تھی جس کے لیے یونیورسٹی کے لیے کتنے مربعوں کی شکل میں وہ جگہ کا جو ہے اس پر بھی لوگوں نے پیسے دیے, بہت سارے یونٹس بھی خریدے گئے. یہ بات تو اربوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے. پروجیکٹ آ رہے ہیں, نئے منصوبہ جات آ رہے ہیں, کیا وہ اسی کا تسلسل ہے یا کہ وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں؟
4: میں اس سارے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دینا چاہتا ہوں. ایک بات جو ابتدا میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم منہاج القرآن کی بات کرتے ہیں, مجھے ذاتی طور پر میں دکھ سے یہ بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
3: آپ این جی او کی بات کریں.
4: جی میں انہی کی طرف آ رہا ہوں. باقاعدہ آپ کے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے ایک ایک پروجیکٹس کے بارے میں دیتا ہوں. لیکن جو افسوس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک اور وہ تحریک پورے یورپ میں پھیلائی, مساجد بنی, لوگوں کے بچوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھے, لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے, ان کا ایک ویژن تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ مختلف نام کی جو تنظیمیں بنی اور جو مختلف نام کے لوگ اس میں شامل ہوئے، ایک موصوف ہمارے ڈنمارک میں بھی ہیں، وہ موصوف جو ہے اگر وہ اپنا مکان 4.5-5 crore کا، آپ سوچئے، یہ تو ڈنمارک تو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بھی کم نہیں کیا اس کو کھانے میں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بدنام کرنے میں، ان کی کردار کشی کرنے میں، جو کچھ انہوں نے آپ سارے لوگوں کو دینا چاہا تھا اس کے اوپر ایک قدغن لگانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف، ہم ایک موصوف کو رو رہے تھے پچھلے 3-4 ہفتوں سے، اور

0: ज्यादा बेहतर है बजाय वो जो आंखें बंद कर कर चलता है, और उस शख्स के बारे में जो आंखें बंद करके ब्लाइंडली चलता है उसको तो अल्लाह ताला ने पर से तशबीह दी है। तो सोचने समझने की बात है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे दोस्त अहबाब सोचें और समझें। ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, सच्ची बात यह है कि इन्होंने जब से इब्तदा की है झूठ फ्रॉड ड्रामे के, मैं सच्ची बात कहता हूं, आप इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स देख लें, मैं एक एक का नाम ले देता हूं जिसके ये सारे गवाह हैं। ये जो साहेब यहां पर तशरीफ ला रहे हैं, आप जब उनके सामने खड़े होते हैं तो जनाबे वाला, ये मिनहाज मेडिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर है, इसके नाम के ऊपर कितने करोड़ों और अरबों रुपया आपने पूरी दुनिया से इकट्ठा किया, ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, कितने डॉक्टर्स बनते हैं इस पे, इसके कितने सेशंस होते हैं, कितने प्रोफेसर, बिल्डिंग कहां है, ये किस शहर में पाया जाता है, सवाल कीजिएगा जब आप उस महफिल में बैठें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे जितने भी सामीन और नाजरीन हैं, खो वहां जाने का, या आप तक जब कोई इंसान पहुंचता है और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की बात करता है तो उससे पूछिएगा कि ये फरीद मिल्लत अस्पताल जो है इसके नाम पे आपने करोड़ों का अरबों रुपया इकट्ठा किया, इस नाम का अस्पताल दुनिया के किस हिस्से में पाया जाता है, वहां पर कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लोगों का इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है, या वहां पर आप पैसे लेते हैं, इसकी इसका कोई नक्शा, इसकी कोई तस्वीरें, इसकी कोई फिजिकल हैसियत जो है, ये पूछिएगा, आप इनसे पूछिएगा कि मिनहाज पॉलीटेक्निकल कॉलेज का प्रोजेक्ट आपने दिया था और वो मिनहाज कॉलेज जमीन के नहीं इस कायनात के किस हिस्से में पाया जाता है, वहां पर कितने प्रोफेसर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन आता है, कितनी फीस लेते हैं, क्या होता है, किसके अंडर होता है, वो अरबों रुपया साहेब कहां गया। ये जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं कि हम आपको नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, उनसे पूछिएगा कि मिनहाज इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है, कितने इंजीनियर बने हैं आज इंजीनियरिंग कॉलेज से, यहां पर कितने प्रोफेसर हैं, कितनी फीस लेते हैं, कहां पर ये होता है, इन साहिबों से पूछिएगा, इनसे पूछिएगा। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं मिनहाज सिटी जिसका आप कर रहे थे,
1: ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट,
0: ये इतना
1: देखे ना जलजले में कितने इन्होंने घर बनाए, जो
0: जी जलजले की बात
1: की तादाद में उन्होंने
0: जी जलजले की बात भी करते हैं। अच्छा, मिनहाज सिटी के बारे में इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया, जैसे आप कह रहे थे जिसके हम सारे गवाह हैं, हमारे जानने वालों में से बहुत सारे वो यूनिट्स खरीदे 1,000 यूरो के, कुछ को तो मैं जानता हूं जिन्होंने 5-5, 10-10 यूनिट्स भी खरीदे, ये सारे यूनिट्स जो खरीदे यूरो में इनको कन्वर्ट करें क्राउन्स में, इन पाकिस्तान के रुपयों में, तो जवाब तो दें।
1: उस वक्त 20 रुपए का एक क्राउन था
0: जी, जरा जवाब तो इनसे मांगे, वो अरबों के हिसाब से पैसा किधर गया। वो जो मिनहाज सिटी है वो इस कायनात के किस सयारे पे पाया जाए, जो अल्लाह ताला ने 7 जमीनें बनाई हैं उसमें से किसी एक जमीन के किसी हिस्से पे तो होगा,
1: बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मौजूद है कंप्यूटर के,
0: मैंने ये
1: कंप्यूटर के अंदर
0: जी
1: 3D में आप देख
0: जी
1: रहे।
0: जी जो मैंने ये कहा है ना कि अल्लाह ताला की जात अकदस फरमाती कि मैंने 7 जमीनों को तख्लीक किया, मैंने 7 किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये खुदा के नाम पे मांगते हैं, ये अल्लाह ताला के नाम को इस्तेमाल करते हैं और इनको खौफ नहीं आता, ये मस्जिदों में आते हैं, ये वुजू में बैठते हैं और नमाज पढ़वाते हैं, और नमाज पढ़ाने के फौरन बाद कहते हैं साहब बैठ जाइए, और हमारा ये नया लोगों के दिलों को गरमाते हैं, उनको मजहबी तौर पर ब्लैकमेल करते हैं, उनको मजहबी तौर पर वरगलाते हैं। ये वही कहन है जिनका जिक्र मैं करता हूं, ये वो कहन है जो इनको अपने खुदा से खौफ ज़दा, तो जिस खुदा के मानने वाला हूं, मेरा रब तो वो है कि जो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है तो वो 70 कदम अपने बंदे की तरफ बढ़ाता है, जो एक दफा तोबा कर लेता है वो उसकी 1,000 दफा तोबा कबूल करता है, जो उसकी तोबा कर लिया है तो वो उसको माफ कर देता है। किस खुदा से खौफजदा करते हैं आप लोगों को, आपने आपका ये तमाशा, आपका ये सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम आपकी हर जगह पर, जहां पर भी आप ये नए प्रोजेक्ट इकट्ठा करेंगे, अपनी कोठियां बनाएंगे, अपने महल बनाएंगे और अपना बिजनेस डेवलप करेंगे, अपनी फूड्स की चेन्स बनाएंगे, सारी बातें हमारे पास मौजूद हैं।

0: جس جس نے بنائی جہاں جہاں پہ بھی بنائی ہمیں پتا ہے انشاءاللہ وہاں سے چلی ہے نا یہ بات پھیلے گی اور پورے یورپ میں پھیلے گی. منہاج القرآن ڈینمارک سے چلا تھا تو پورے یورپ میں پھیلا تھا, آج یہ جتنے کرپٹ لوگ منہاج القرآن میں شامل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عزت کو اچھال رہے ہیں, چہرہ مسخ کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات سے پھر رہے ہیں, اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ایک بات کا ان کو جواب دینا ہوگا. اب منہاج سٹی دنیا کے کسی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زمین جو اس نے سات زمینیں نہیں کرتا, کتنا دھوکہ دیں گے. اب پتہ نہیں جو نئے دھوکہ لے کے آ رہے ہیں نئے پروجیکٹس, اس سے پہلے آپ نے زلزلے کی بات کی تھی, مجھے خوف آتا ہے.
1: میں نے پہلے بات زلزلے کی تھی لیکن جو جگہ خریدی گئی تھی جو لاہور ہیڈ آفس جو ہے لاہور میں اس کو باہر شفٹ کیا جائے, اس کے لیے وہ مربوں کے حساب سے جو زمین خریدی گئی وہ کہاں پر ہے, وہ بن چکی ہے, تیار ہو چکا ہے؟
0: یہ سوال تو میں نے اسی لیے کہا نا کہ جن لوگوں نے وہ میرے منہاج القرآن کے قرآن رفیق ہیں, وابستگان ہیں, یا وہ جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, یا جنہوں نے جانا ہے یا جو جانے کا سوچ رہے ہیں, یہ سوال تو ان کو چاہیے. وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ جو اتنی زمین خریدی گئی وہ کیا ہوئی, اور وہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ کیا ہوا. یہ سارے سوالوں کا جواب وہاں پر پوچھے. میں ایک بات کر کے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں. زلزلہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سارے پاکستانیوں کو بہت خوبصورت دل دیا ہوا ہے. جب بھی پاکستان پر اس وطن عزیز پر مصیبت آتی ہے, ہم دیار غیر میں بسنے والے ہر پاکستانی, وہ یورپ میں ہوں, وہ امریکہ میں ہوں, وہ کسی بھی بر اعظم میں آباد ہوں, جہاں جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کے دل پس جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور اسی ملک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جب زلزلہ آیا, جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو یقف والا وہ وقت ہوتا ہے. رائے صاحب یہ وہ وقت ہوتا ہے جو تالے آزما لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے چرب زبان, جیسے ہمارے موصوف ہیں یہاں پر ایک, یہ چرب زبان کیا کرتے ہیں, یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ پاک جو ہی مصیبت کوئی زلزلہ کی صورت میں کسی آفت کی صورت میں جب آتی ہے سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے, میٹنگ بلا لیں جی. میٹنگ بلانے کے بعد جی اعلان کر دیں جی, اعلان پہ جی پیسے اکٹھے کر لیں, اور پھر وہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک موصوف ہے نا, اس طرح کے موصوف جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑے پائے جاتے ہیں, وہ کھڑے ہو کے آپ کو حدیثیں سنا, آپ کو اللہ کے خوف سے ڈرانا شروع کریں گے, پھر کہیں گے دیکھیں آپ کے ملک میں کتنے زلزلے آتے ہیں کیونکہ آپ نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا, آپ نے چندہ دینا چھوڑ دیا. اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو, پھر اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کسی کو یاد نہ ہو تو آج انٹرنیٹ پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے, قبلہ محترم کی تقریریں بھی موجود ہیں, باقی جو منہاج القرآن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی سپیچز بھی ہیں. کہا یہ گیا کہ ہم جو ہے جب زلزلہ آیا تو ہم 10,000 گھر جو ہیں وہ ایسے کہ جس میں ہر سہولت موجود ہوگی, یعنی کہ اس طرح آپ جیسے آپ لکسس کہہ رہے ہیں کہ لکسری قسم کے ہم گھر بنائیں گے جس جو لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں گے. اور 10,000 جب گھروں کا کہا جائے تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سوچ کہ یہ اللہ کے نام پہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ 10,000 گھر بنانا چاہتے ہیں, تو 10,000 بہت بڑا ہوتا ہے,
1: بہت بڑی بستی ہوتی ہے جی.
0: ایک شہر ہے پورا, 10,000 گھر بنانے ہیں تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کی جائے, پھر دریغ نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے لوگ بھی اپنی جیبوں سے جو ہو سکتا ہے نکال دیتے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں اسٹوڈنٹس بچے بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں, جو جو بن پڑتا ہے وہ ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ پروجیکٹ یہ اتنا بڑا بتا
1: ایسا کیا یہ حقیقت ہے؟ لوگوں نے بھی پیسے دیے.
0: میں کہتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ادھار لے کے کہا کہ یار یہ 500 کراؤن آپ ڈال دیں میری طرح, مجھ سے بعد میں لے لینا. یوں بھی لوگوں نے, یہ بہت بڑی قربانی ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا جذبہ ہے, یہ قابل قدر جذبہ ہے پاکستانی قوم کا, اس کو اس جذبے کو سیلوٹ کرنا چاہیے.
1: رائے صاحب اعتراض کیا ہے؟
0: تو جب یہ جیبیں خالی, راج صاحب اعتراض یہ ہے, پہلے تو پروجیکٹ اتنا بڑا دکھایا اور بنایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی واہ سبحان اللہ, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا پروجیکٹ, آپ کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں. جب اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر 10,000 سے आपके 2000 रह जाते हैं। ऐलान होता है कि नहीं हम भरपूर तरीके से बनाएंगे लेकिन 2000 घर बनाएंगे। मैंने ये सोचा कि शायद जितनी खरबों में चाहिए थी वो शायद इतनी इकट्ठी नहीं हो सकी, तो चलें 2000 भी अगर एक जगह पर उनकी अकोमोडेशन का कुछ सिलसिला बन जाए तो ज़बरदस्त है। तो उन्होंने 2000 का ऐलान कर दिया। अब पैसा आ रहा है, तिजोरियां भर रही हैं, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, उसके पास शायद पैसे रखने की जगह ना बची हो। लेकिन अब कहा जाता है कि जी यूं करते हैं कि ये 2000 की बजाय हम 500 घर बनाते हैं। अब वो 500 घर भी नहीं रहते। आज मुझे ये बताएं वो 10000 कहानी, अरबों रुपया इकट्ठा करने वाली कहानी, वो सफर 2000 से 500 से 200, आज उसका कोई नामो निशान क्या इस अर्ज़े वतन पाकिस्तान जमीन पर है या इस कायनात के किसी कोने पे है? वो घर किधर हुए, वो लोग किधर हुए, वो जिन लोगों ने अपनी जेबों से अल्लाह के नाम पे पैसे, जिन लोगों ने अपनी जेबों को काट के, अपने खर्चों को काट के, वो जिन बच्चों बच्चियों ने पैसे दिए थे, आंखें बंद करके जरा सोचिए कल खुदा की बारगाह अकदस में क्या कहेंगे। आप हमें हिसाब ना दें, मुमकिन है हम हिसाब ना ले सके। ये बात मैं तकरीबन हर दफा कहता हूं, मुमकिन है अगर कोई आपके सबूत तलाश करने के लिए निकले तो आप इतने तेज दिमाग लोग हैं, आखिर आप लोगों ने दरसे निजामी किए हुए हैं, इतने तेज दिमाग लोग हैं कि हम सबूत ना ढूंढ सकें, पैसा ना ढूंढ सकें, और हो सकता है कि नैब भी आपके सबूत ना ढूंढ सके। लेकिन एक
1: का मतलब इशारा कर रहे हैं शेख रशीद की तरह कि जो कहते हैं ये कंप्यूटर चोर है।
0: लेकिन एक एक जगह है, एक नैब है, वो मेरे अल्लाह की जात है, वो इंसानों के दिलों से गुजरे हुए ख्यालात को जानता है। मैं कहता हूं ये सारे लोग, मैं एक इस बंदे को नहीं गिन रहा जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और बयान करने वाले हैं बहुत जल्दी, इस तरह के जो सैकड़ों के हिसाब से मिनहाजुल कुरान में करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, एक तो यहाँ पर वो भी साहब मौजूद हैं इसी हमारे मुल्क में जो मिनहाज दरसे निजामी करके आए थे और फिर उन्होंने कौन सा धोखा यहाँ पर नहीं दिया जिसके बड़े बड़े सबूत हैं, कहाँ कहाँ से पैसा नहीं कमाते
1: हैं जो मंसूबा जात की
0: जी। तो अब मुझे ये बताइए कि मैंने जितने भी आपके सामने ये प्रोजेक्ट्स गिने हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फ्रीद मिल्लत अस्पताल, मिनहाज पॉलीटेक्निकल कॉलेज, मिनहाज इंजीनियरिंग कॉलेज, 10000 स्कूल, और फिर ये भी कहा जाता था ने तो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दी थी, हम यहाँ पर 1000 अलीगढ़ बनाएंगे, वो पैसा तो वाकई 1000 अलीगढ़ जितना आपने इकट्ठा कर लिया आप एक भी नहीं दे सके। अब कौन सा अलीगढ़ लेके आप हमारे सामने आ रहे हैं, इन लोगों को अब कैसे लूटना है और कौन कौन से आपने नए असबाब सोचे हैं लूटने के, जब एक तरफ से आपको नहीं मिलता आप एक नई कहानी गढ़ के एक नए हैं, कल किसी और रूप में थे आज आप किसी और रूप में आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके तवस्सत से, रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी लिंक के तवस्सत से सारे सुनने और देखने वालों से ज़रूर कहना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रखिए सारे मिनहाज पुराने साथियों और रुफका और वबस्तगान और वहाँ पर जाके नमाज पढ़ने वालों, सच्ची बात बताएं, आंखें बंद करें और सोचें पैसे दे के कब से शुरू किए थे ये पैसे देने, आज भी नमाज पढ़ते हुए मेरा दोस्त अभी ये जो इतवार गुजरी है तो मुझे एक दोस्त ने खाने पे बुलाया, वहाँ पर एक और दोस्त भी आ गया, यकीन कीजिए मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, कहता है कि मिनहाजुल कुरान के जाके नमाज पढ़ते हुए ज़रा डर लगता है क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते ये खौफ अंदर रहता है कि पता नहीं अब कितने पैसे मांगेंगे, अब पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अब पता नहीं किस बहाने से हमें लूटेंगे। लोग थक गए हैं पर आप नहीं थकते, आप अपने खुदा की बारगाह में कैसे जाओगे? और लोगों सोच लो समझ लो कितना लुटोगे, अपने गांव में देखा करो, जो दीन हमें सिखाता है उसकी तरफ चला करो, इन मौलवियों के पीछे मत भागें, मैं जब मौलवियों को कहता हूं तो इसका मतलब ये वो सो कॉल्ड खास नपे चुने लोग हैं जो इस नाम को, इस दीन को खराब करते हैं। इनफैक्ट वो अपना ही नुकसान करते हैं लेकिन सादा लोगों को लूटते हैं। तो बेहतरीन दीन तो यह है जो हम खुद सीखते हैं। आप खुद पढ़ें, आप खुद तलाश करें, अपने लोग, अपना खानदान, अपना गांव जो डिजर्व करते हैं उन तक आप खुद ये अमानतें पहुंचाएं। ये है फर्ज हम पे, हम पे खुदा के या किसी अदारे को दें, ये हम पे फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ये कहती है कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो देना चाहते हैं तो पहले अपने खान, अपने घर में देखें और फिर अपनी गली मोहल्ले में देखें, अपनी बस्ती में देखें, अपने शहर में देखें। तो ये इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं राय साहब, और कल पता नहीं क्या नाम हो प्रोजेक्ट का जो पेश किया जाएगा और उसके बारे में कितनी हदीसें सुनाई जाएंगी, किस तरीके से मजहबी तौर पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा, खौफ ज़दा किया जाएगा, और खौफ ज़दा करने के बाद कितने कितने की यूनिट, और वो यूनिट खाने वाले वाले क्या सोच के आए होंगे। क्योंकि जब भी होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं, मैं जब घर से
1: ये यूनिट्स की बात करते हैं तो ये 20-20 यूनिट, ये 20,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ होते हैं
0: जी।
1: तो इनकम होती है तो लोग इतने यूनिट खरीदते हैं। ये तो सोशल में तो नहीं बंदा खरीद सकता, यूनिट में तो बंदा इतने यूनिट नहीं खरीद सकता, ये तो कारोबारी लोग खरीद सकते
0: नहीं है। यहाँ पर डेनमार्क में बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो जो यूरोप में आने वाले लोगों के साथ अल्लाह ताला ने शायद उनको दौलत देने के साथ साथ एक अच्छा दिल भी दिया, जितने भी लोग, मैं मेजॉरिटी की बात,
1: क्या रहा है कारोबारी शख्स इतने जो किसी मतलब है किसी एनजीओ को पैसे दें।
0: जहां तक टैक्स का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाँ टैक्स के लिए ये होता है कि पहले तो ये कि आपकी जो फर्म लेवल पे रजिस्टर्ड है, किस तरीके से रजिस्टर्ड है, और जिस लेवल पे वो रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक ख़ास रकम डोनेट करने की इजाज़त होती है, वो टैक्स फ्री होती है और वो अपनी गाइनस्केप से जो निकाल सकते हैं। लेकिन ये तफसील जो है वो जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो खुद जानते हैं।
1: ये कानून पर रहने दे रहा है सब, ये कानून
0: जी बिल्कुल,
1: कानून के लिए
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: सब आपने जिक्र किया यूनिट्स का, लोग यूनिट्स खरीदते हैं, और जो वेलफेयर फाउंडेशन है यूके से आ रहे हैं जो कि ये आने वाले जो उनके मनसूबा जात हैं उस पर ब्रीफिंग देंगे। सर जो आपने बताया थोड़ी देर पहले, इतना लंबा आपने बताया, इतने उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मनसूबा जात थे उनमें कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। जल्जले का भी जो है वो, पैसों का भी जो है वो मसले मसाइल है। अदारा मिनाजुल कुरान के या एनजीओस का जो बड़ा अदारा है लाहौर में, उनके भी 4.5 करोड़ के मामलात हैं। इसी तरह कभी मस्जिद के मामलात होते हैं कि 14 करोड़ की खरीदी की, 18 करोड़ की खरीद, 4.5 लाख करोड़ का अखराजात हुए, 5 मिलियन के अखराजात हुए। ये मिली जुली जो खबरें आ रही हैं उन्हीं की जबानी आ रही हैं। तो राय साहब आपकी बात को तकवीर पहुंचती है कि सादा लोग जो है वो अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, सोशल भी ले रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, टैक्सियाँ भी चला रहे हैं। तो पैसे राय साहब अगर कोई अपनी खुशी से लुटवाना चाहता है, लुटना चाहता है, तो लूटने वाले उनको लूटना चाहते हैं, कब तक आप लोगों को बताएंगे?
0: नहीं, इस तरह नहीं बात कि अगर कोई उनको लूटना चाहता है या वो लुटवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं, तो वो लोग जो है गुफ्तगु से अपना एक इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर छोड़ते हैं। अब मसला ये होता है कि मज़हब के मामले में हम जितने भी लोग हैं, किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम सादा लोग होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा खुदा, हम चाहते हैं कि जो गुनाह हमसे सरजद हो गए वो हमारा अल्लाह जो है वो किसी ना किसी तरीके से माफ़ फरमा दे। अब हमारा जो सोर्स होता है इन सारे सवालात को पूछने का,
1: मैं बात करता हूँ, एक मेंबर की कितनी फीस होती है, जो मंथली पेड मेंबर है उसकी कितनी फीस है?
0: मिनहाजुल कुरान की बात कर रहे हैं,
1: एनजीओ की बात कर रहे
0: हैं आप? अगर एनजीओ की बात करें, मुझे नहीं पता कि आजकल वो हमारे जमाने में ये भी है कि कुछ लोग ये चूज करते हैं कि वो मंथली देते हैं, और हम जितने पुराने साथी थे हम तो लाइफ मेंबर हैं।
1: शुक्रिया राय साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया ये मिनाज सिटी, मिनाज मेडिकल कम्प्लेक्स, फरीद मिल्लत अस्पताल, मिनाज पॉलीटेक्निकल कॉलेज, मिनाज इंजीनियरिंग कॉलेज, 10,000 स्कूल, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिनाज सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने जल्जला जदगान के नाम पर फाउंडेशन, बहुत बड़े। तो राय साहब ये तो सारी चीज़ें जिस तरह आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये तो अभी कहीं इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन पेपरों में है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सामईन नाजरीन, मैंने खुद कंप्यूटर में ज़रूर देखा कि ये चीज़ें इस तरह के जो है ना नक्शा जात जो हैं वो मुकम्मल बन चुके थे, जगह हमने खरीद ली हैं, फंडिंग्स हो गई है, जिस आपने भी बताया। लेकिन आप बता रहे हैं कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, तो पेपरों की हद तक तो राय साहब है ना, ये तो आप माने ना।
0: जी बिल्कुल, मैं ये बात तो मानता हूँ कि तो अपने सारे सुनने और देखने वालों को, वो ये है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो अभी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर सोच समझ के जाएं कि ये नए नए नाम देते हैं प्रोजेक्ट्स को, पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया है। अब खुदा के लिए सोचिए समझिए इससे पहले कि आप अपनी जेबों की तरफ हाथ लेके जाएं। मेरा इसके साथ कोई तलक नहीं, मैं अवेयर करना चाहता हूँ आप पे हर सुनने वालों को, जो सच मैं जानता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सारे नाम आपको बताएंगे, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको बताएंगे, स्लाइड्स दिखाएंगे आपको, वीडियोस दिखाएंगे, बड़ी बड़ी लंबी रोएंगे, जैसे आप अगर सब जानते हैं और स्पेशली जो मिनहाजुल कुरान से तलक रखते हैं वो तो जानते हैं कि आगोश नाम पर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आगोश नाम पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मेरा भी दिल उस जगह पे इतना नरम हुआ कि यतीम बच्चे, सहारा नहीं, बेआसरा लोग, वो बेआसरा बच्चे वहां पर रहेंगे, उनको अच्छे कमरे दिए जाएंगे, उनको अच्छी रिहाइश दी जाएगी, उनको अच्छी तालीम दी जाएगी, उनको सब कुछ दिया जाएगा। मैं जाती तौर पे ये समझता था इससे बढ़ के नेकी क्या हो सकती है।
1: ऐसा हमारा टाइम खत्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपने बड़ी।
0: मैं छोटी सी बात मुकम्मल कर लूं तो वो भी मुकम्मल, वो आगोश भी जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, आज उस आगोश की हालत क्या है, मैं छोटी सी बात कर देता हूं, इसकी तफसील इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि आज उस जहां पर आगोश में उन
1: ऐसा बहुत शुक्रिया
0: वहां पर स्कूल बना हुआ है।
1: नाजरीन आज का प्रोग्राम हमारे पास इतना ही वक्त था। नाजरीन हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने सवाल किए और राजा बाबर साहब ने उसके जवाब दिए, तो ये हम आप पर छोड़ते हैं। जहाँ पैसा देना चाहते हैं, आपका दिल करता है आप ज़रूर दें, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया हुआ है। और यहाँ सोचें, अपने बच्चों की तरफ सोचें, अपने ख़ानदान की तरफ सोचें, अपने बहन भाइयों की तरफ सोचें, उसके बावजूद आपका दिल करता है तो आपको पूरा हक है अपनी मर्ज़ी करने का। हम कोई पुलिस मैन नहीं है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पीछे से हमें कहा जा रहा है कि आपके पास 10 सेकेंड है। अल्लाह हाफिज़, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला आपकी आवाज़ का बराह रास्त प्रोग्राम है। समय ना आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि कल हमारी जब पार्लियामेंटेरियन कोपेनहेगन के मलिक सिकंदर सदीक से बात हो रही थी, तो बजट की बातें चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजे हो रही थी लेकिन खुलकर नहीं आ रही थी। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं मलिक सिकंदर से कि आज क्या हुआ और आपकी जो तस्वीर अभी मीडिया में आ रहा है क्या हो रहा है। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत थैंक यू।
1: सिकंदर, ये क्या खबर है आज सुना है, बजट से आप वाक कर गए हैं या निकल गए हैं या आपने बाइक काट किया, ये कहानी क्या है?
2: जी, मैंने जिस तरह के जितने भी हमारे सामाईन है उनको मैंने जो कि रेडियो पे मैं जब पिछले दिनों संडे के दिन रोज बोल रहा था, तो इसी तरह मैंने जो 27 अगस्त तो पार्लियामेंट के अंदर सेशन था उसमें भी मैंने तकरीर में यही बोला और फेसबुक पे हर जगह मैंने एक ही बात की कि हम इस बजट में, हमें लॉर्ड मेयर ने इनवाइट किया, हम जाएंगे, हम इसको बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखेंगे और अपना बेहतर से बेहतर जो है इसमें हम डालने की अपना हिस्सा कोशिश करेंगे। और मैंने साथ ये भी क्लियर वाजे अल्फाजों में कहा था कि हम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए या क्या उसे कहते हैं, अपनी जेबें नहीं, अपनी वो जो क्या उसे कहते हैं, अपने वो एक पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने के लिए हम किसी बजट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब 120 साल बाद जो है नई हुकूमत आई है जिसमें इनस लिस्ट नगर खेल मिनिस्टर और SF जो है ये मेजोरिटी पार्टीज हैं कोपेनहेगन में, तो हम उम्मीद करते हैं और ये बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो कोपेनहेगन का 50 मिलियन खूना का जो बजट है वो हमेशा की तरह फजूल चीजों पे बाद मन नहीं लगेगा, वो पहले हमारे वेलफेयर पे लगेगा, बच्चों पे लगेगा, बूढ़ों पे लगेगा, स्कूलों पे लगेगा, जो सबसे मुश्किल हालात में यमलूस उन पे लगेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही मैंने आपसे भी बात की थी उस दिन और अब हम 3 दिनों से नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत चल रही थी जिसमें सारी पार्टी की आदत लीडर्स और लॉर्ड मेयर और जो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के जिनके ऑफिसर्स हैं बड़े वो सारे मौजूद है। फ्राइडे के दिन हमने शुरू किया, सुबह 9 बजे शुरू किया, 5 बजे तक चला, फिर कल रात को जो है मेरे ख्याल से कल जो है कोई इसी तरह को 12 घंटे जो है चला, आज भी चला, तो आज जो है इस पे बहस चल रही थी, तो हमने आज वहां वॉकआउट कर दिया और हमने कहा कि हम अब मजीद इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि
1: तो
2: ये जो
1: पहले तो कंजर्वेटिव वाले भी निकल गए थे कल ना।
2: हाँ जी, कल कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने कल ही उन्होंने कह दिया कि हम इस हिस्सा नहीं बन सकते, उनको पार्किंग के ऊपर इश्यूज आ रहे थे, तो हमने बहरहाल क्या कहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किया और कहा चले ठीक है, अगर आप मजीद बच्चों के लिए सबके लिए बेहतर करते हैं तो फिर अगर आप सिर्फ 50 या 80 जो पार्किंग एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हम उसको देखेंगे अभी फुल पैकेज को क्या बनता है। तो बहरहाल हम आज भी गए और आज भी हमने वहां भी यही बात की और देखें अजीबो गरीब, मैं अभी मुकम्मल जो है अभी लिस्ट मेरे पास है नहीं, जब ये अभी बजट बनेगा तो मैं आपको मुकम्मल लिस्ट दिखाऊंगा कि कहां कहां ये पैसे लगा रहे हैं। और हमने इनसे ये कहा कि देखें हमारी अव्वल प्रायोरिटी ये है कि जो आम वर्कर है, लेबर जो है हमारी कोपेनहेगन की, जो आम बच्चा है, आम आवाम है, इस बार बजट का बड़ा हिस्सा उनके लिए जाना चाहिए और इस पे फिर बहुत बहस चली है। अब उधर ये नेगोशिएशन होती है ना, बड़ा लंबा टेबल होता है, उसपे सारे पार्टी लीडर्स और उनके साथ एक दो जो उनके एडवाइजर वगैरह होते हैं या उनके जो मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं। मैं लॉर्ड मेयर के साथ, जो लॉर्ड मेयर की टीम थी उसके साथ मैं बैठा हुआ था, इस तरह सब पार्टियां, लंबा टेबल होता है, अब सारे बैठे होते हैं, उसपे फिर बहस चलती है और डिबेट होती है और उसपे तो हमने
1: का क्या रोल था।
2: देखिए होता ये है कि जो ये एक कानून है कि जब जो ये जो नेगोशिएशन चल रही होती है ना, जो कमरे के अंदर बात होती है वो आप बाहर नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने वहां क्या बात की, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि दूसरे बंदे ने क्या बात की। लेकिन इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमने वहां पे कहा कि जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री खाना मिलना चाहिए स्कूलों में। हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होनी चाहिए। हमने कहा कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे के सबसे मुश्किल हालात में जो लोग हैं, जो बेघर है, जो यमलूस है, वो इन सदियों में बहुत बड़ा इशू रहा है। रात को जगह नहीं होती तो वो ठटरते हैं और रातों को उनको सदियों में बाहर गुजारनी पड़ती है। तो हमने कहा यार कोपेनहेगन इतनी रिच एक कम्यून है, उनके लिए गारंटी होनी चाहिए कि उनके पास शेल्टर हो, जगह हो, यानी कि घर हो जिसका शेल्टर होता है, उसमें वो जाके रात अगर ठंड हो तो वो गुजार सके। इसी तरह हमने कहा कि कोपेनहेगन कम्यून में हम मुसलमान जो है, माइनॉरिटीज जो है, हम वाहिद ऐसे हैं इस मॉडर्न जमाने में कि हमारे ऊपर कोई डेटा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से, हेल्थ पॉलिसी के हवाले से। और पुलिस ने 2024 में जो बनाती थी हर साल कि कितने होते हैं, उसके बाद कितने वाक्य वो बताती थी कि 700 के करीब वाक्य होते हैं, वो उन्होंने 2024 से खत्म कर दिया। हमारी ये डिमांड थी कि कोपेनहेगन कम्यून जो है वो खुद अपना सर्वे करे, जो माइनॉरिटीज है उनके घर पे वो ई बॉक्स के थ्रू वो आए, एक स्पेयर स्कीम है जिसपे आप लिख सकें। क्यों जरूरी था? ताकि वो जब हर साल जमा हो तो हम उसके हिसाब से पॉलिसीज पे बना सके कि देखिए ये इश्यूज है माइनॉरिटीज को, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पे भी इन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया। और जबकि वहां पे बस मैं यही ख्याल रख रहा था।
1: चले, ये उसका मतलब है कि दोबारा चांसेस वो आप लोगों से रिज्यू कर सकते हैं?
2: वो जाहिर बात है जब तक बजट बंद नहीं होता तो रिज्यू कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहां बड़ी क्लियरली अभी घंटा पहले ही मैंने किया, आपने देखा इसलिए ब्रेकिंग न्यूज लगी है छिविछो पे और छिविछो कॉस्मोपोल पे, मैंने वहां बहुत क्लियरली ये बात कही है कि हम जो तवक्को रख रहे हैं और जो हजारों की लाखों की तादाद में जिस वोटर ने सोशल डेमोक्रेट को हटा के आपको वोट दे के अब लाए हैं, उनकी तवक्कोआत ये नहीं है कि आप फिर उसी तरह करें जिस तरह पहले चलता आ रहा है। उनकी तो तवक्को है कि अब फिर सियासत चेंज होगी कोपेनहेगन की, अब डिफरेंट होगी। अब इनोसिस्ट सबसे बड़ी पार्टी है, एसएफ लॉर्ड मेयर की पोस्ट पे बैठी है। इस हवाले से हमने इनको, मैंने बड़े वाजे अल्फाजों में, मैं उठने से पहले मैंने बल्कि बता ही देता, मैंने इस तरह शुरू किया, मैंने कहा कि मैंने उस दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी यही बात की है, असेंबली के फ्लोर पे, और मैंने यहाँ पे भी बार बार कर रहा हूँ आपकी, मैं समझता था कि ये बजट जो है इस बार डिफरेंट होना चाहिए। पहले जमाने में जिस तरह कभी सॉलिडेरिटी को सामने रखते हुए आप बच्चों पे, बूढ़ों पे पैसा लगाते थे, ये इस तरह का बजट होना चाहिए। इस पे मैं उसका नामो निशान नहीं देख रहा। इस वजह से 3 दिनों के बाद अब मैं इस फैसले तक पहुंचा हूं कि हमारा अब मजीद इस नेगोशिएशन में, इस हैंडलिंग में बैठना अब हमें नागुजार है, क्योंकि हमें जो जिस तरीके से ये शेप ले रहा है, जिसमें मैं भी आपको लिस्ट ला के दूंगा जिसपे आप देखेंगे कि किस तरह ये क्या क्या वो उस पर पैसे पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा जब इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं है, जब लोग पैसों के हाथों फैमिली तंग है, जब इतने कोर इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, फजूल जगहों पे आप पैसा लगा रहे हैं, इसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। ये बात मैं वहां करके मैं वहां से उठाऊं।
1: तो ये फिर बजट पास होने की आखिरी तारीख कौन सी है?
2: ये हफ्ता और जो दूसरा हफ्ता होता है, ये 2 हफ्ते होते हैं जिसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल तक परसों तक ये एक डील कर लेंगे।
1: मतलब ये सारा डील पे चलेगा, सारी पार्टियां डील करेंगी, क्या क्या हिस्सा मिलता है, जितना जुस्सा इतना हिस्सा लेंगे अपना।
2: बिल्कुल, देखे ना वो यही होता है ना कि मुझे सिर्फ इस चीज से ये इशू है कि आप जो कमरे के बाहर बात करते हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जो आप वोटर्स के सामने बात करते हैं, वही बात फिर आप बंद दरवाजों में के पीछे भी किया करें। और मैं समझता हूँ कि हम इलेक्ट इसलिए होते हैं कि हम अपने अवाम के लिए इलेक्ट होते हैं, हम एक दूसरे को पावर में रखने के लिए इलेक्ट नहीं होते। सो इसलिए हमारा बहुत वाजिया एक स्टांस था, पहले दिन से था, हमने बहुत जोर लगाया है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखें जो राइट विंग पार्टीज है ना, उन पे तो मैं कोई ना ही तवक्को रखता हूँ ना ही रखनी चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी उनकी थी, मेजॉरिटी उनकी है, तो میں ان سے یقیناً مجھے وہ ہے ایک انہوں نے امید توڑی ہے, کیونکہ 123 سال کے بعد ایک نئی لارڈ میئر آئی ہے, اس کو تو اس کا پاس رکھنا چاہیے تھا نا, چینج کرنا چاہیے تھا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اب میڈیا سارا جو ہے وہ اب اسے جو جو جو کاسموپول ہے انہوں نے اب رابطہ کر رہے ہیں نا لارڈ میئر سے, کہہ رہے ہیں سکندر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر کامنٹ دیں. اب اس نے کہا ہے, کہہ رہی ہے کہ میرے کوئی کامنٹس نہیں ہے. وہ کیا دے کامنٹ, میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی, بالکل صحیح کر رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کوبر ہے.
1: چلیں آپ لوگوں نے جن سے ووٹیں لی ہیں, جو آپ کا پارٹی کا ہے, جو طریقہ کار ہے جسے کہتے ہیں سولیڈیریٹی کے لیے, آپ نے کوشش پوری کی اور جو آپ کا موقف تھا آپ کا تسلیم نہیں کیا جا رہا تو آپ واک آؤٹ کر گئے.
2: نہیں دیکھیں دیکھیں یہی ہوتا ہے نا, اب میں اگر چاہتا تو میں بیٹھا رہتا, میں کہتا چلے ٹھیک ہے, اور پھر میں بجٹ کا حصہ بنتا, پھر ہم ایک دوسرے کو, مجھے کمر نہیں ہوتی, کمر کھجاتے ہیں ایک دوسرے کی, میں بھی بیٹھا رہتا. لیکن ہماری سیاست ایسی نہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو آپ نے پہلے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ اترے. میں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ بھی نا کہ آپ لوگوں نے کیا الیکشنوں میں وعدے کیے جس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے اور سوشل ڈیموکریٹ کو نہیں دیے, ان وعدوں پہ اترے. اب آپ کے پاس پاور ہے.
1: چلیں سکندر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بریکنگ نیوز دی, تو انشاءاللہ باقیہ جو ہے اتوار سنڈے والے دن آپ کو براہ راست دوبارہ لیں گے. سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بجٹس کا جو پاس ہونے جا رہا تھا اسے انہوں نے واک آؤٹ کر لیا ہے, لیکن پھر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. یہاں ایک ڈیموکریسی ہے, یہاں بات چیت کے راستے بند نہیں ہوتے. سامعین ناظرین, آج کی بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
3: ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: और इसके अलावा जो लोग गए हैं वो एक अलग है। अब इस 2026 में अगर ये प्रॉब्लम करते हैं तो 2026 और 2027 में कितने लोग कोपेनहेगन से मूव करते हैं? देखिए, जिन्होंने गाड़ी रखी है, जो कोपेनहेगन से बाहर काम कर रहे हैं, वेस्टाइन में काम कर रहे हैं, किसी जगह भी शीलैंड में काम कर रहे हैं, तो मियां बीवी को गाड़ी की
1: शाह
0: जरूरत
1: साहब,
0: होती
1: जरूरत
0: है।
1: पड़ती है। शाह साहब, एक सवाल है, चूंकि आपको काफ़ी तजुर्बा है, आपने बहुत सारी पार्टियों को करीब से देखा है। शाह साहब, 123 साल के बाद जो है ये लाडमेर की जो सीट है सोशल डेमोक्रेट से छीन कर ये अब SF के हिस्से में आई है, तो लाडमेर का ये पहला बजट है, तो पहले बजट में उन्होंने जो वादे किए हैं उनके लिए अगर ये पूरे ना किए गए तो शाह साहब फिर क्या साइन आएगा?
0: देखिए जी, मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि ये सोशल डेमोक्रेट के पास ही मेयरशिप है, क्योंकि जो चीजें अखबार में आ रही हैं वो ज्यादातर ये आ रही हैं कि ये अमीराना बजट है। अमीराना बजट, मैं इस पे ये बात करूंगा, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी फर्म्स को ठेके दिए जाएंगे कि आप फुटपाथ इस तरह बनाए, रोड्स को तंग किया जाए, पार्किंग प्लेस ज्यादा बनाए जाए, जहां से हमको जैसे अभी पिछले साल पार्किंग के अंदर 104 अरब रुपए का कोरोना का इनको प्रॉफिट हुआ है। और आप ये हिसाब लगाएं कि अगर इनको कम्यून को 104 अरब कोरोना का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो जो जो कंपनियां ये चालान कर रही हैं, जिन्होंने ये ठेके लिए हुए हैं, उन्होंने कितने $100 बिलियन उन्होंने कमाए होंगे, और वो बगैर स्कैट टैक्स के यहाँ से ले जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई थी जब 90s के बाद इंग्लैंड से कुछ फर्म्स आई डेनमार्क के अंदर, उन्होंने कहा कि इसको लंदन मॉडल बनाना चाहिए। मैं उस वक्त वेनिसा में था, तो मैंने इसकी जबरदस्त मुखालफत की। मैंने कहा, देखो, लंदन और न्यूयॉर्क मॉडल यहाँ कोपेनहेगन में मत बनाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके इस बात की क्यों तकलीफ है? तो मैंने कहा, ये देखो कि लंदन और न्यूयॉर्क में माफिया के लोग रहते हैं, वो लोग वहां पे, लोगों के पास करप्शन का बेशुमार पैसा है, वहां पे लोग जो है वो बगैर टैक्स के काम कर सकते हैं, हर एक चीज करते हैं।
1: मुश्किल काम है, यूरोप में तो कानून हुकूमत करता है, लोग तो नहीं करते।
0: नहीं, पर यहाँ पे सियासतदानों ने इस चीज को, इस खून को मुंह में लगा लिया, और इन्होंने यह क्या किया कि यहाँ पे जो है सड़कें तंग कर दी और पार्किंग प्लेस को जो है उन्होंने करना
1: लेकिन
0: शुरू
1: शाह
0: कर
1: साहब,
0: दिया।
1: जब आपने और हमने जो एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मुतालबा किया था कि यहाँ पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन अब आवाज़ें उठ रही हैं वीकेंड में भी फ्री होनी चाहिए, पार्किंग फीस कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी आवाज़ें उठ रही हैं। तो शाह साहब, अगर ये फ्री करोने इस बजट का हिस्सा बनती है तो उनकी बातें नहीं मानी जाती, तो उन्हें बजट से बीच में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए?
0: देखिए जी, बजट के बीच में रह के बात कर सकते हैं, दलायल दे सकते हैं, दलायल सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि आपकी आप बात मनवाने में। देखिए, इस वक्त जो 80% लोग हैं कोपेनहेगन कम्यून के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, या कोपेनहेगन में रहते हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यून से आए हुए हैं, या यूलैंड से आए हुए हैं, या लांगलैंड से आए हैं, या दूसरे दूर दराज इलाकों से आके कोपेनहेगन में वो वक्ती तौर पे 5 दिन काम करते हैं। फ्राइडे आफ्टरनून या सैटरडे को वो अपने अपने घरों को पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं। वो ये समझते हैं कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको अगर ये सहूलत ना दी जाए गाड़ियों की और वो साइकिल पे ही जाएं, तो ये बहुत मुश्किल बात है। अब जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो साइकिल पे दो तीन बच्चों को ले जाकर और बारिश या तूफान के अंदर या बर्फ के अंदर वो इनको लेकर नहीं जा सकते। फिर कोपेनहेगन के शान भी यह है कि कोपेनहेगन के
1: तो
0: अंदर
1: शाह
0: गाड़ियां
1: साहब,
0: जो
1: अगर जिस
0: होनी
1: तरह
0: चाहिए।
1: हम भी बात करते रहते हैं, आप भी जिक्र करते हैं, कम्युनिटी फोरम भी इसका जिक्र करती है, अगर यहाँ जो है ट्रेनें बसें फ्री कर दी जाएं टोटल, तो कितने का खर्चात आ सकते हैं?
0: देखिए जी, बसें जो हैं वो पहले ही गवर्नमेंट के बजट पे चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री करती है तो इनको आवाम को जो है उसकी सहूलत जरूर मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि बसें जो हैं वो सिर्फ चंद एक रूट्स पे चलती हैं, और बसों के लिए भी इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं, सड़कें बहुत ज्यादा तंग कर दी गई हैं, और बसें जो हैं उसके लिए भी अब ड्राइवर जो हैं वो तकरीबन इतने ज्यादा मयसर नहीं है यहाँ पे। और ड्राइवर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जॉब्स लें मेजॉरिटी ड्राइवर्स जो हैं वो अब ट्रक्स की तरफ देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म बसेस की तरफ देख रहे हैं। आप कोपेनहेगन को देखें कि 40 किलोमीटर की स्पीड कर रहे हैं। 40 किलोमीटर क्या मतलब कि 15-16 मील की रफ्तार से आप गाड़ी चलाएं, आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हमारे जो एक्सपर्टीज हैं कोपेनहेगन कम्यून ने जो रखे हुए हैं, जो एम्प्लाइज किए हुए हैं, वो इस तजर्बे से
1: नाराज
0: लोगों
1: हो
0: को
1: गए।
0: बिल्कुल हाँ, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखें कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट की वजूहत क्या है कि देखिए जब ये गाड़ी स्विंग होती है पास करते हैं तो इन्होंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि जो साइड के शीशे हैं वो जो है आरसी शीशे हैं उसके अंदर आपका डिस्टेंस जो है गाड़ी का, जो पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको बिल्कुल आपके बंपर से बंपर लगी होगी तो वो शीशे से आपको नजर आएगी कि ये बहुत दूर है, अभी अभी बहुत दूर है। और अगर आप दरमियान वाले शीशे से देखेंगे, सेंटर वाले शीशे से, तो आपको एकदम एहसास होगा कि वो तो बिल्कुल मेरे बैक पे लगी हुई है। तो लोग बाजों का जब बेंड को चेंज करते हैं, साइड को
1: तो
0: चेंज
1: शाह
0: करते
1: साहब
0: हैं, लेफ्ट
1: आपका
0: से राइट
1: मतलब
0: टर्न
1: है कि
0: करते हैं।
1: ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। डेफिनेट शाह साहब, ये मुल्क टैक्स पे चलता है, ये सहूलियात जो मिलती हैं ये टैक्स की वजह से मिलती हैं, कम्यून में जो सहूलियात मिलती हैं या बूढ़ों को मिलती हैं, हैंडीकैप्स को मिलती हैं। शाह साहब, जब दूसरे ममालिक में ये सिंपल हैं कि बसों का पेंशन, इसके लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ तो पेंशन का जो हम सुनते हैं कि गुजारा करना मुश्किल है।
0: देखिए जी, आप इंग्लैंड में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वहां पे आप सिर्फ ये प्रूफ कर देंगे आप 60 हैं, आप एक दिन भी ऊपर हुए हैं 60 आपके एज हुई है, तो आपको वो बगैर किसी सबूत के आपको वो कहेंगे कि आप बस में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में इतना पैसा आपको लगेगा, आप सफर कर जाए। आपको मेजोरिटी बसेस जो हैं उनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफर कर सकते हैं। बल्कि आप तो वो अगर आप मैनचेस्टर से लंदन जाए तो जो गवर्नमेंट की बसें हैं जो नॉर्मल रूट से चलती हैं उनके अंदर भी आप फ्री हैं, और जो दूसरी बसें हैं उसके अंदर भी ना पेमेंट करने के बराबर आपको इतनी सहूलतें दी गई हैं। और फिर हैंडीकैप को तो वो बहुत ही ज्यादा, और बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं जिनको जैसे कि हमारी एज है, इनको तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीट देते हैं, पीछे नहीं बैठने देते, फ्रंट पे बैठाते हैं ताकि इनके लिए उतरना और चढ़ना जो है आसान हो जाए। बड़ी सहूलत
1: लेकिन शाह
0: उन्होंने
1: साहब,
0: फ्रेम
1: आप
0: किया है।
1: तजावीज़ दे रहे हैं, आप लिखते हैं, चूंकि आप थिंक टैंक हैं तो आप वेंस्ट्रा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लीडरशिप को जानते हैं, और आप उनकी वॉलपेपर पे लिखते भी रहते हैं और आपको ये मैसेज जवाब भी मिलता रहता है। तो शाह साहब, एज ए गैर मुल्की इस वक्त करना क्या चाहिए?
0: देखिए जी, इस वक्त हम लोग गैर मुल्की तो यहाँ पे वो होगा जिसको अभी तक यहाँ के परमानेंट वीजा नहीं मिला। यहाँ पे जब जिसको येलो कार्ड मिल जाता है, स्विस सिटीजन बेवीज मिल जाती है, तो वो उसके उतने ही राइट्स हैं जितने एक
1: राइट
0: डैनिश पासपोर्ट होल्डर के हैं। मसला अब ये क्या है, मसला ये है कि कुछ कानून ऐसे बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर जो कि लॉ फोर्सले है, जो लॉ नहीं है। लॉ भी हो तो वो आइन के, अगर आइन के खिलाफ वर्दी है तो वो जो है वो खत्म हो सकते हैं। हमारे कोई भी सियासतदान जो है इसके ऊपर बात नहीं करते, ना वो इसके ऊपर कोई राय लेना चाहते हैं, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मसला ये है कि कोपेनहेगन और वेस्ट आइन में लोगों को वैसी ही सहूलत देनी चाहिए जैसे उडनसे के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर उन्होंने सहूलतें बनाई हुई है। आपको पता है कि आपको खालिद भट्ट साहब ने यह बताया था कि उडनसे बकायदा स्टेशन के ऊपर, मैं अभी देख के आया हूँ, उडनसे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो ज्यादा बहुत सर्विस बनाई हुई है कि आप उतरते
1: शाह
0: ही
1: साहब,
0: वहीं उसके
1: आसानियां
0: अंदर
1: आ
0: चले जाए।
1: रही हैं उडनसे वालों को, पहले मिल गई हैं। अभी यहाँ के जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं, जितने भी कम्यूनों में बैठे हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। शाह साहब, ये जो अभी लॉर्ड मेयर हैं अपना यहाँ कोपेनहेगन से, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट, तो मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है, कि वो इस सारे सिस्टम को कामयाब हो जाएंगी, या वो तनकीद का निशाना बनेंगी, या वो सबकी तालियां लेंगी, या सबकी दुआएं लेंगी?
0: देखिए जी, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है इनिस लिस्टन, और ये एसएफ की जो बॉबेस्टर है, इसके पास इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। कम्यून और पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंस यही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो सिर्फ लॉ मेकर्स होते हैं या पार्टी की सियासत को आगे लेके चलते हैं। जो कम्यून होती है, कम्यून के बजट के अंदर जो सियासतदान इलेक्ट होते हैं, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, उनको कुछ तो अपनी पार्टी का भी मंशूर देखना पड़ता है और कुछ उनको अपनी जहानत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये देखना पड़ता है कि हमारे इलाकों के इलाके में जहां कल को हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है, वहां हम क्या पेश कर सकते हैं और हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे तख्तियां नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर लिखी जाती है कि इस बंदे ने ये चीजें जो है वो मिनट्स पेश की है और उसके ऊपर हाँ या ना हुई ये एक अलहदा बात है। लेकिन हिम्मत वही कर सकता है जो अवाम के अवाम दोस्तों अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश करे, ख्वा वो अकेला वोट हो या उसके पास 50 वोट हो। बात उनको अवाम की करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना चाहिए, पूरे कोपनहेगन के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होनी चाहिए। बाज़ुकात आप ऐसी जगह जाते हैं कि आप जहां किसी को विजिट करने के लिए जाते हैं पूरे वेस्ट आयन और कोपनहेगन में मेजोरिटी जगह पे, तो आपको वहां पे बकायदा वो जो है वो हाउसकीपर से एक कार्ड लेना पड़ता है जो आप अपनी गाड़ी में रखेंगे ताकि आपको पार्किंग टिकट ना लग जाए। और ये इतना डिफिकल्ट है कि आप किसी को विजिट करने जाते हैं और
1: तो
0: आपको इस
1: शाह साहब
0: असूल
1: इसका
0: का पता
1: मतलब
0: नहीं।
1: है कि जो मामलात हैं सख्त सख्त होते जा रहे हैं, कानून में सहूलियात नहीं मिल रही, सख्तियां मिल रही हैं, गो के रेवेन्यू भी जो है वो बाकायदा मिल रहा है, अच्छी तादाद में प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। तो शाह साहब हमारे पास 1 मिनट है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे?
0: जी मैं नौजवान नस्ल को ये कहूंगा कि देखिए ये आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान की सियासत को भूल जाएं, यहाँ की सियासत में यहाँ के कानून का आप एहतराम करें, आपको कोई बुरा शायरी नहीं कहेगा। हम इसी मुल्क के अंदर 1970 से लेके 1990 से थोड़ा सा ऊपर हमने यहीं पे जिंदगी गुजारी है, हम भी उस वक्त जवान थे यंग थे, तो ये बताएं कि ये लोग राशिस्ट नहीं थे, बल्कि हमने खुद अपने अंदर राशिज्म पैदा किया है। इसको हमें खत्म करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए, अगर आगे भीड़ है अगर रश है तो बड़े एहतराम से अपने इंतजार वेट करें, बल्कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम बहुत ज्यादा रश है, तो आप 15 मिनट पहले निकल जाएं, आप मोबाइल टेलीफोन को इस्तेमाल ना करें गाड़ियों में। और जितने भी हमारे नए बंदे आ रहे हैं जो इस वक्त वाहन और दूसरी गाड़ियां बड़े ट्रक चला रहे हैं, वो इतना रफ सड़क को एक से दूसरी साइड पर जाते हैं, तो और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लाजमन गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि अगर कोई आगे गाड़ी जाती हुई इंडिकेटर दिए बगैर ही जो है
1: तो
0: वो रश टाइम में,
1: शाह साहब चलते चलते साइकिलों वालों को क्या पैगाम देंगे?
0: इस साइकिल वालों के की बाइक जो है इसको इंश्योर्ड होना चाहिए, इसको बकायदा एक नंबर इशू होना चाहिए, जैसे ये 70s में था 60s में था, इनके ऊपर नंबर होना चाहिए और ये बकायदा इंश्योर्ड होने चाहिए ताकि इनको चलाते हुए पता लगे कि ये किसका साइकिल है, कौन टक्कर है, कौन गलत चल रहा है। और इनको इनको भी उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना एक मोटरसाइकिल वाला या एक कार वाला मुजरम है।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन ये थे हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जिन्होंने कीमती मालूमात दी। कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा चैनल हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजसमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजसमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजसमान सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजसमान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वजीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।